आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सुप्रभात आगरा।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर 6 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की

0: प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रातः के 6:05 और 15 सेकंड हुए हैं। आराध्य के श्री चरणों में निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अष्ट विनायक सिद्ध विनायक, पार्वती है महतारी, शरण त्यारी आए गणपत, राखो लाज हमारी।

हे प्रभु, अज्ञानतावश हम अहंकार में डूबे रहते हैं। ये अहंकार हमें आपके स्मरण और ध्यान से वंचित करता है। ऐसी कृपा कीजिए प्रभु, हमारा ये गर्व चूर चूर हो जाए। विनम्रता पूर्वक हम आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर आपके चरणों की धूल को शिरोधार्य करें।

नटवर नागर कृष्ण मुरारी, हे मधुसूदन हे गिरधारी, हे गोपाल हे रास बिहारी, राधे श्याम दीन हितकारी, तुम बिन कोई और न दूजा, राखो लाज हमारी।

0: राधा के प्रिय मधुर मनोहर जय जय छैल बिहारी। इसके साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आज आपने सुरेश वाडेकर, हरिओम शरण, वाणी जयराम और साथियों के स्वर में भजन सुने। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 6:25 हुए हैं। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार।
1: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे युग के संभ्रांततम व्यक्तित्वों में से थे। वे ज्ञानवान, विद्वान, चिंतक, विचारक और ऊंचे आदर्शों से अनुप्रेरित धार्मिक व्यक्ति थे। वे एक ऐसे निर्भय, देशभक्त और राष्ट्रीय नेता थे जो हमेशा स्व की अपेक्षा सेवा को महत्व देते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी समय के महत्व पर विशेष

0: बल देते थे और समय को देश सेवा में अधिक से अधिक लगाने की बात करते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था, यदि स्वास्थ्य मेरा साथ देता रहेगा तो मैं अपना सारा जीवन देश की सेवा में लगाऊंगा। राजेंद्र प्रसाद जी में देश प्रेम की उत्कट अभिलाषा थी, इसीलिए देश की प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने कहा, यह हमारा परम कर्तव्य है कि देश की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु हमारे हृदयों में जो ज्वाला धधक रही है उसे हम जलाए रखें। देश इस दिशा में आपके निर्भय विचारों की प्रतीक्षा कर रहा है। देश को एक नई राह दिखाने के लिए उन्होंने लेखकों को अच्छा लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके शब्दों में, लेखक केवल दृष्टा ही नहीं सृष्टा भी है। इतिहास की ऊंच नीच के बावजूद देश की सांस्कृतिक एकता को अविच्छिन्न करने का श्रेय बहुत हद तक लेखकों के रचनात्मक प्रयत्नों को है। कवियों और कलाकारों, लेखकों और बुद्धिजीवियों को आज भी पथ प्रदर्शन करना है, जैसा कि पहले वालों ने पुराने समय में किया है। बहरहाल हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी अनेक भाषाओं के स्वतंत्र विकास के लिए धर्म और दर्शन को खुली छूट देनी हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषाई एकता को मजबूत बनाने के लिए लोगों से विभिन्न भाषाएं सीखने को कहा। उन्होंने हिंदी भाषी लोगों से दक्षिण की भाषाएं सीखने को कहा और सुझाव दिया कि दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों के अनुवादों का मूल्य कम रखना चाहिए। उन्होंने आशा की कि इस तरह राष्ट्रीय एकता बढ़ सकती है और उत्तर तथा दक्षिण के बीच एकात्म की भावना पनप सकती है। ज्ञान के लिए अपने सच्चे प्रेम और जीवन भर अनेक शिक्षण संस्थाओं से घनिष्ठ संबंध रखने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शिक्षा में गहरी दिलचस्पी थी। शिक्षा के बारे में उनका कहना था कि कम से कम वर्तमान समय के लिए हमारा आदर्श ये होना चाहिए कि हम इसकी सतह को फैला दें, क्योंकि इसके द्वारा हम धनी और निर्धन के दरवाजों तक एक जैसी रोशनी फैला सकते हैं। उन्होंने शिक्षा के तीन उद्देश्य बताए, जिनमें से दो का संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से है और तीसरे का सामूहिक जीवन से। उनका मत था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा में अन्य सुधारों के साथ शिक्षा के माध्यम में भी परिवर्तन होना चाहिए, यानी वो शिक्षा जनता की भाषा में देनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसीलिए त्रिभाषा सूत्र की परिकल्पना दी। लड़कियों की शिक्षा के बारे में तर्कसंगत विचारों के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मान्यता थी, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है नारियों में शिक्षा का विस्तार। उनके अनुसार हमारी राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक उन्नति में नारियों को महत्वपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। इसको भली भांति जानते हुए उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता और शिक्षा को बहुत महत्व दिया। उनके अनुसार स्त्रियों को चाहिए कि वो पुरुषों के मस्तिष्क और उनकी भावनाओं को स्वयं में ढालते हुए अपनी जिम्मेदारी संभाले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अतीत को वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा का एक महान स्रोत मानते थे। उनके अनुसार भारत के लोगों को अपने अतीत के इतिहास को याद रखना चाहिए।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। छह बजकर 6:30 हुए हैं। आकाशवाणी आगरा से अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:15 पर आप सुनेंगे जिले की हलचल। इसे हम आकाशवाणी के

लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद 6:35 पर हम प्रसारित करेंगे श्री रामचरितमानस गान। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 7:15 आज आप सुनेंगे श्री एस के काकरान की वार्ता। विषय रहेगा संतुलित उर्वरक प्रयोग क्यों और कैसे करें। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी, गले के रोग और उनका उपचार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सत्यमित्र। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुनते हैं 7:31 पर। पूर्वाहन 11:00 कार्यक्रम होगा आज के कलाकार। ये कार्यक्रम आज अभिनेत्री सारिका पर केंद्रित होगा। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे 11:30 पर। कार्यक्रम का विषय रहेगा शारीरिक श्रम है उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी। महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी घर संसार दिन में 1:15 पर। इसमें आज चर्चा करेंगे, विषय रहेगा दो पहियों पर संस्कृति। क्रम रहेगा मेरी माटी मेरा देश, मुझे कुछ कहना है और बात पति की। इसी कार्यक्रम में एक कहानी प्रसारित की जाएगी, शीर्षक रहेगा सिक्के का दूसरा पहलू। युवाणी कार्यक्रम में 5:30 हमारे युवा श्रोता सुनेंगे चर्चा हीट वेव में सेहत का ख्याल। क्रम रहेगा आज का सवाल और एक लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी, कूल और लाइफ स्टाइल का अहम हिस्सा बनती साइकिल। वार्ताकार होंगे सुश्री भावना सिंह। इसके अलावा क्रम रहेगा आइए जाने जीने की कला और आज के हम सफर। ग्राम्य लोक कार्यक्रम में 6:00 हमारे किसान भाई सुन सकेंगे चर्चा फसल चक्र की उपयोगिता। सुश्री आस्था शर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी, विषय रहेगा उन्नत बीज समृद्ध किसान। मौसम की जानकारी दी जाएगी, मंडी भाव बताए जाएंगे और लोकगीत भी आप इस कार्यक्रम में सुन सकेंगे। 6:30 पर हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल। इसमें आज चर्चा की जाएगी विश्व साइकिल दिवस के बारे में। श्रीमती सपना मांगलिक की कहानी प्रसारित की जाएगी गमछे वाला हीरो। क्रम रहेगा आज का प्रश्न ज्ञान सागर और कुछ सेहत टिप्स दिए जाएंगे। विविधा कार्यक्रम में 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे श्री दाऊजी अग्रवाल की वार्ता। विषय रहेगा जीवन संतुलन की पाठशाला है साइकिल। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश 7:31 पर।

लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:45 पर हम आपको सुनवाएंगे बलवीर सिंह बघेल के गाए ब्रज लोकगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:30 हम प्रसारित करेंगे वसीम अहमद खान का ख्याल गायन। सदाबहार फिल्म संगीत आप सुनेंगे गीतांजलि कार्यक्रम में सुबह 8:45 पर और सुरसेवता कार्यक्रम में 10:00। पुराने फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे गीत मंजूषा कार्यक्रम में 9:25 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का

शिव जी की बारात में जाने के लिए देवताओं तथा दिग्पालों के समूह एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने विनोद में उन्हें शिव जी की वेशभूषा के प्रतिकूल बता दिया। इस पर शिव जी ने दूत भृंगी को भेजकर अपने गण बुलवाए। फिर तो ऐसी बारात सजी जिसे हिमवान की नगरी के बालक देखते ही जैसे जान बचाकर भाग चले। कैसे थे शिव जी के गण? कोई दुबला, कोई बहुत मोटा, कुछ भयंकर गहने पहने, तो किसी के हाथ में नर मुंड और पूरा शरीर ताजे रक्त में सना हुआ, कुछ के मुख गधे, कुत्ते तथा सुअर जैसे। ये सभी अनगिनत योगिनियों, प्रेत और पिशाचों के साथ चल रहे थे। जैसा दूल्हा वैसी बारात। इधर हिमवान ने अद्भुत ढंग से अपनी नगरी को सजाया था। मंडप ऐसा सुंदर जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। विवाह के अवसर पर जगत के सारे छोटे बड़े पर्वतों, वन, समुद्र और नदियों को न्योता भेजा गया था। ये सब अपने इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर उपस्थित हुए। बारात नगर के निकट आई तो नगर निवासी बन संवर कर नाना प्रकार के वाहन लेकर उसकी अगवानी करने चले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे मन्ना डे, संगीत संयोजक सतीश भाटिया, प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री एस के काकरान की वार्ता। विषय है संतुलित उर्वरक प्रयोग

0: कैसे?
1: किसान भाइयों, जिस फसल को जितनी मात्रा में जितने तत्वों की आवश्यकता होती है, उन्हें सही समय पर एवं सही विधि से खाद उर्वरक के रूप में देने को ही संतुलित खाद कार्यक्रम कहते हैं। किसान भाइयों, आपको फसल बुआई से पूर्व मिट्टी की जांच का कराना अति आवश्यक है। मिट्टी की जांच से हमारे किसान भाइयों को यह पता लग जाएगा कि हमारे खेत में किस तत्व की कमी है तथा किस तत्व की अधिकता है। उसी के अनुरूप किसान भाइयों को उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, जिस भूमि से नमूना एकत्र करना है उसको लेबल करके, उसके घास को हटा करके एक वी आकार से खुरपे से आप उसको 9 इंच तक की गहराई तक मट्टी काट दें और इस प्रकार 5-6 स्थानों पर एक खेत से मट्टी इकट्ठा करके उसको सही मात्रा में मिला करके एक आधा किलो मट्टी को थैली या प्लास्टिक के थैले में डाल करके उसमें उसके ऊपर किसान का नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, उसका खेत का नंबर, उसके खेत में कौन सी फसल बोई गई थी और किस फसल को वह अब बोना चाहता है आदि लिखकर वह इसको मट्टी जांच के लिए नमूना एकत्र कर सकता है। किसान भाइयों, जिस प्रकार से मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पौधों को अपना जीवन चक्र चलाने के लिए विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके बिना पौधे अपना जीवन चक्र सफलतापूर्वक नहीं चला सकते हैं। उन्हीं तत्वों को हम आवश्यक पौध पोषक तत्व कहते हैं। उन्हीं तत्वों को वे हमारे तत्व क्या हमारे किसान भाइयों के लिए क्या करते हैं? किसान भाइयों, यह आवश्यक पौध पोषक तत्व पौधों की खुराक के रूप में काम में आते हैं। कुछ तत्वों की आवश्यकता हमारी फसलों को अधिक मात्रा में होती है और कुछ तत्वों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। अधिक मात्रा में ले जाने वाले तत्व प्रमुख तत्व कहलाते हैं, जबकि कम मात्रा में ले जाने वाले तत्व सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्वों के बारे में जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वायु और पानी से हमें पौधे प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, यह प्रमुख पौध पोषक तत्व हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, यह गौण पोषक पौध तत्व हैं। और लोहा, जस्ता, मैग्नीज, बोरोन, मॉलिब्डेनम, तांबा, क्लोरीन, यह सभी तत्व 16 विभिन्न प्रकार के तत्व हमारे पौधों को पोषक तत्वों के रूप में काम में लिए जाते हैं। अब हमें किसान भाइयों को हमारे मुख्य तत्वों के कार्यों के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन को ही लीजिए, पत्तियों में गहरा हरा रंग प्रदान करता है, फुटान में वृद्धि करता है, पौधों को बढ़ाता है और प्रोटीन में वृद्धि करता है। फास्फोरस को लीजिए, जड़ों का विकास करता है, फसल का पकाव करता है, पाले से बचाता है, फूल और बीज बनाने में मदद करता है। पोटाश को लीजिए, पोटाश तत्व फसल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को अच्छा करता है, रोग और कीट निरोधक शक्ति प्रदान करता है, फसल के गिरने से बचाव करता है, डंठल को मजबूत बनाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धि को संतुलित करता है। मुख्य तत्वों की कमी के लक्षणों का हमारे किसान भाइयों को जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमी से नीचे की पत्तियों का हरा रंग वी के आकार में अग्रभाग से पीला होने लगता है, पौधों की वृद्धि कम होती है, पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगती हैं। फास्फोरस के कारण जड़ों की बढ़वार कम होती है, फसल की बढ़वार व पकने में देरी होती है, पत्तों, तनों और शाखाओं का रंग जामुनी पड़ जाता है। पोटाश को लीजिए, निचली पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं जो बाद में सूख जाते हैं। मक्का, गेहूं और धान में पत्तियों का सड़ना फुगने से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ता है, पत्तियां पकने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं, बालियां छोटी और कमजोर हो जाती हैं, अधिक कमी होने पर बालियों में दाने बहुत छोटे और ऊपरी भाग में होते ही नहीं हैं, यानी बनते ही नहीं हैं। गन्ने की पत्तियों पर पीलापन लिए भूरा रंग चढ़ जाता है। उर्वरकों के प्रयोग की विधि और समय भी की जानकारी होना भी हमारे किसान भाइयों को बहुत आवश्यक है। बुआई से पहले

हमारे किसान भाई उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, इसके लिए बखेर कर और पंक्तियों में उर्वरक डालना चाहिए। बुआई का समय उर्वरक बीज और साथ मिलाना चाहिए। पोरा द्वारा उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। बीज व उर्वरक मशीन द्वारा डालना चाहिए। खड़ी फसल में बुरकाव द्वारा उर्वरक को डालना चाहिए और मिट्टी में मिला करके उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों से मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि सर्वप्रथम अपनी मिट्टी की जांच कराएं। हमारी मिट्टी की जांच कराने से हमारे जमीन में तत्वों की कमी का पता लग जाएगा और उससे हमें अधिक उर्वरक पर खर्च करने से हमारी बचत होगी और हमारे इससे उत्पादन में वृद्धि होगी।

0: वृद्धि होगी।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री एस के काकरान की वार्ता। विषय था संतुलित उर्वरक प्रयोग क्यों और कैसे करें। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। दिन भर की भाग दौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम।
2: सूरज की खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा कर आप सभी का स्वागत है।
3: गाता एक राम
4: भक्ति संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती एफएम के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद डीटीएच सेवा के संग।
2: आज की के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी डीटीएच के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप।
4: बस डीटीएच सेवा का उठाए लाभ,
2: आपकी हर सांस के साथ साथ डीटीएच सेवा 24 घंटे रहे आपके पास।
4: डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, डीटीएच सेवा है जहां।
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आपको याद दिला दें, समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे 11:30 पर। इस कार्यक्रम में आज का विषय है शारीरिक श्रम है उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी। 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार। ये कार्यक्रम आज प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सारिका पर केंद्रित होगा। बलवीर सिंह बघेल के गाए ब्रज लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:45 पर। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुनेंगे 7:31 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर एक लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी, गले के रोग और उनका उपचार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सत्यमित्र।

0: मया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधनं वर्तते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति। गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिक शैक्षिकरूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्तियोजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मू वर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति, अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचित मार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े, तब सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्च न्यायालयस्य पञ्च न्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, संजीव सचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्च न्यायालयीय न्यायविद समितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्ति विषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पञ्चायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य 42 संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पञ्चायत्तेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पञ्चायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां 34 ग्राम पञ्चायत्तेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पञ्चायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च 8 पञ्चायत्तेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्थविभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामि दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्रांध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य तडितपातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडावार्तासु, महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांग भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैण्डेन 2-1 इत्यतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और

0: न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 4-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit. The discussions will be focused on exploring avenues of cooperation in the areas of trade, investment, energy, renewable energy, healthcare and pharmaceutical. Senior Congress leader D.K. Shivkumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavarchand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru at 4 p.m. Mr. Shivkumar's appointment comes days after Mr. Siddaramaiah stepped down as chief minister, paving the way for his deputy to take over the post. West Bengal government will launch a major social welfare initiative, Annapurna Yojana, today. Chief Minister Subendu Adhikari will formally inaugurate the scheme. The launch will be a massive synchronized event spanning the entire state.

0: तक शुरू होती हैं। श्वास प्रणाली के सबसे ऊपर का भाग स्वर यंत्र कहलाता है, जहां से आवाज निकलती है। गले के रोगों में सबसे सामान्य गला खराब होना या सोर थ्रोट और टॉन्सिल की बीमारियां हैं। गले की खराश या सोर थ्रोट प्रायः वायरस जनित और कभी कभी जीवाणु जनित या एलर्जी के कारण भी होता है। इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गले में स्थित टॉन्सिल मुख व गले के विकारों में अग्रिम रक्षा पंक्ति माने जाते हैं, जो इन विकारों में बढ़कर फूल जाते हैं या सूज जाते हैं और तुरंत इलाज की सूचना देते हैं। टॉन्सिल का बढ़ना, सूजना या पक जाना एक सामान्य बीमारी तो है, परंतु उतना ही सरल है उसका नियंत्रण भी। शिशु जन्म से लेकर किशोरावस्था तक इसकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है और सरल भी है। छोटे शिशुओं को दूध पिलाते समय सिर धड़ से कुछ ऊंचाई पर रखें, उसके ऊपर उन्हें थोड़ा पानी अवश्य पिला दें। बड़े शिशुओं को दूध पिलाने के बाद कुल्ला या गरारे अवश्य कराएं। बड़े बच्चे स्वयं यह ध्यान रखें कि दूध आदि पीने के बाद, मिठाई आदि खाने के बाद कुल्ला करके मुंह साफ कर लें। आशय यह है कि मुंह में खाद्य पदार्थ के कण पड़े न रह जाएं। यदि ये कण पड़े रहेंगे तो जीवाणु सक्रिय होंगे और उन्हें भोजन मिलेगा, फलतः गला खराब होगा, खराश, टॉन्सिलाइटिस आदि होगा। बार बार टॉन्सिल की बीमारी होने से ये आकार में बढ़ते जाते हैं और कभी कभी इनका आकार इतना बड़ा हो जाता है कि खाना निगलने और सांस लेने में कष्ट होने लगता है। इस अवस्था में टॉन्सिलों को निकालने का ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज बचता है। गले में काग के पीछे एक और रचना पाई जाती है, जो शिशु के विकास के साथ किशोरावस्था आते आते स्वतः समाप्त हो जाती है। इन्हें अंदरूनी टॉन्सिल या एडिनोइड कहते हैं। गले व नाक के विकारों में ये भी बढ़ जाते हैं या सूज जाते हैं, जिससे नाक से गले का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है और सांस लेने में परेशानी होती है तथा शिशु मुंह खोलकर सांस लेता है। लगातार एडिनोइड या टॉन्सिल का कष्ट रहे और शिशु मुंह खोलकर सांस ले तो आगे के दांत और होठ आगे की ओर उभर आते हैं, चेहरा बुरा लगता है। मुंह और गले की नियमित सफाई और बार बार मुंह झुठाने की आदत छोड़ने से और तुरंत विकार का उपचार करने से बचा जा सकता। आवाज बैठना या गला बैठना स्वर यंत्र वाले भाग का कष्ट है, जिसे उपचार द्वारा शीघ्र ठीक किया जा सकता है। गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना गले के विकारों में लाभप्रद होता है। नाक द्वारा भाप लेना भी गला पड़ जाने पर या आवाज बैठने में हितकर होता है। जल नेति एक योग क्रिया है जो गले व नाक की अनेक बीमारियों को हमसे दूर रख सकती है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सत्यमित्र की वार्ता। विषय था गले के रोग और उनका उपचार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए सुनते हैं समवेश्वर में देशभक्ति परक गीत।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं सौवेश्वर में देशभक्ति परक गीत। 7:18 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, प्रतीक्षा कीजिए।

0: का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का किया गठन। एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा

0: बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। सीबीएसई ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनाधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सीबीएसई ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। सीबीएसई के सचिव का भी तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। श्री योगी ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
2: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है। अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल आगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनाव में अपना वोट डालें।
3: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने 2 दिवसीय आगरा दौरे के दौरान कल वहां के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश

0: भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें प्रदेश के आगरा जिले के बिरहरू ग्राम पंचायत को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार आज नई दिल्ली में यह सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का विशेष आभार जताया।
1: यह गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनूं और लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की इंटरलॉक सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर सचिवालय आरआरसी सेंटर लैब लाइब्रेरी ऐसे बहुत से कार्य करे गए। सरकार को बहुत धन्यवाद।
0: वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील चीन मिस्र इथियोपिया भारत इंडोनेशिया ईरान रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान संस्कृति विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी वाराणसी डॉ. राम नरेश पाल ने बताया कि प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट।
2: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का किया गठन। 1 माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा

0: का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा, भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दिन भर की भागदौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। 7:32 हुए हैं। इस समय आप सुनते हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो हमसफर विशेष कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है हमारा स्वास्थ्य। और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, चाहे वो हमारे आसपास का वातावरण हो, हमारी दिनचर्या हो या हमारा खान पान हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालती हैं। इसमें सबसे बड़ा एक कारक ये भी है कि अगर हम शारीरिक गतिविधियां बहुत कम कर दें या हम चलना फिरना बहुत कम कर दें तो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से दुष्प्रभावित करता है और नुकसान करता है। आजकल हम सुविधा भोगी हो गए हैं और किसी भी काम को करने के लिए हम उसमें ये ढूंढते हैं कि इसमें समय और श्रम कैसे बचाया जा सकता है। हालांकि ऐसी सोच अगर हम रखते हैं तो ये बहुत अच्छी सोच है, श्रम बचाना चाहिए, समय भी बचाना चाहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य की कीमत पर ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो फिर श्रम बचाने से और समय बचाने से हमारे लिए भला क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले हमारी शर्त होती है कि हम अपने जीवन में अपने शरीर को फिट और हिट रखें, और इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा तरीका यह है कि हमारी शारीरिक गतिविधियां निरंतर रोजाना एक निर्धारित समय पर जरूर होनी चाहिए। एक रोजाना के जो काम होते हैं हमारे, उनमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें श्रम करना पड़ता है, या यूं कहें कि हमारी शारीरिक जो क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, वो इतनी अच्छी हो जाती हैं कि हमें अलग से कोई अभ्यास, एक्सरसाइज या अलग से हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि हमें ऐसा कर लें तो हम ठीक हो जाएंगे या स्वस्थ रहेंगे। खासतौर से अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो वहाँ लोग खेतों में काम करते हैं, अपने घरों में काम करते हैं, या उनको कहीं आना जाना होता है तो वो ज़्यादातर पैदल ही जाकर खेतों पर चले जाते हैं, काम करके आ जाते हैं, या फिर उनके पास में साइकिल होती हैं। हमें याद है कि पहले जब हम खेतों से कभी चारा लेकर भी आते थे तो सर पर लेकर आते थे, धीरे धीरे सुविधाएं हुई तो साइकिल पर लेकर आने लगे, ट्रैक्टर हो गए ट्रैक्टर में लेकर आने लगे, बैलगाड़ी में लेकर आते थे, लेकिन ये तब होता था जब बहुत ज़्यादा मात्रा में लाना होता था। अगर हमें थोड़ा बहुत ही लेकर आना है तो हम सर पर भी ला सकते थे, साइकिल पर ले आते थे। अब देखिए, साइकिल की बात चली है तो याद आया कि आज विश्व साइकिल दिवस है, और साइकिल तो एक ऐसा साधन है कि हमारा समय भी बचाता है, श्रम भी बचाता है और हमें स्वस्थ और मजबूत भी बनाता है। साइकिल अगर हम प्रतिदिन 10 किलोमीटर भी साइकिल चलाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। आजकल यूं भी ईंधन का संकट है, चाहे घर में गैस की किल्लत हो या फिर पेट्रोल और ईंधन की बात हो, क्योंकि स्थितियां जो हम इस समय बनी हुई हैं तो ये हमें संकेत देती हैं कि हम थोड़ा सा इन चीज़ों पर नियंत्रण करें। और नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम जो पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहन हैं, हम उनका इस्तेमाल कम करें। और साइकिल एक ऐसा वाहन है, ऐसा साधन है जिसमें केवल एक शारीरिक श्रम लगता है, समय की बचत होती है, और शारीरिक श्रम भी ऐसा लगता है कि ये हमें नुकसान नहीं बल्कि लाभ देता है, फायदा कराता है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए, तो इसका ऐसा नहीं कि लोगों पर असर नहीं हुआ, असर हुआ है, और लोगों ने साइकिल को चलाना या उसका इस्तेमाल या उपयोग करना भी शुरू कर दिया है। और कोशिश ये भी की जा रही है कि अगर कहीं आसपास ही जाना है, हमको पास में ही जाना है, तो या तो पैदल चले जाएं या फिर साइकिल से चले जाएं। बहुत अफसोस होता है ऐसे लोगों पर जो ये कहते हैं कि हम तो अगर पास में पुदीना लेने जाना हो, नींबू लेने जाना हो या मिर्च भी लेने जाना हो, तो हम तो कार से जाते हैं। अब ये समझ में नहीं आता है कि ये बात कहकर वो वास्तव में क्या जताना चाहते हैं, अपनी अक्षमता जताना चाहते हैं या अपनी सुविधाजनक जो जिंदगी है उसके बारे में बताना चाहते हैं। खैर, ये वही जाने। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक छोटा सा काम करने के लिए अगर हम कार का उपयोग करते हैं, तो क्या ये हमारी अक्षमता नहीं है कि हम एक चार कदम पैदल भी नहीं चल सकते हैं? और जब इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर कार में बैठने का कष्ट भी क्यों करना चाहिए? घर पर आराम से बैठिए, आजकल तो ऑनलाइन सुविधाएं हैं, सारी चीजें आपको घर पर उपलब्ध हो जाती हैं। और श्रम करने की जहां तक बात है, तो आप बिल्कुल श्रम मत कीजिए, आप बैठे रहिए। अब आप सोचिए कितने दिन आप बैठे रह सकते हैं और बैठे रहकर आप कितने स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये सब बेकार की बातें होती हैं, इस तरह से कहना कि हम तो छोटे छोटे कामों के लिए भी कार से जाते हैं। कहीं ना कहीं आप इस तरह से कहकर जो भी साबित करना चाहते हो, लेकिन ये तो तय है कि आप अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे वाहनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनमें पेट्रोल और डीजल खर्च होता है या ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। और पर्यावरण का और हमारा जो रिश्ता है वो तो बहुत गहरा नाता है। पर्यावरण अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। और हम जो बात कर रहे हैं इस समय, जो बात कर रहे हैं वो स्वास्थ्य को लेकर ही बात कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य के लिए जितना कुछ हो सकता है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। और हम फिर आपसे कहेंगे कि आज विश्व साइकिल दिवस है, तो थोड़ा बहुत, और ऐसा नहीं है कि किसी के घर में साइकिल नहीं है, साइकिल आज भी है, बस कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनके घर में साइकिल रखने की जगह ना हो, जगह कम होती है तो रखेंगे कहाँ साइकिल। लेकिन साइकिल बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरती है, बहुत छोटी सी जगह में आ जाती है, और घर में एक साइकिल अवश्य होनी चाहिए। कोई पता नहीं है कि आपका वाहन है, मशीन है, कभी भी खराब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास में एक ऐसा वाहन ज़रूर होना चाहिए जिसे आप स्वयं ठीक कर लें और जब चाहें तब उसको इस्तेमाल कर लें। और इसके लिए साइकिल से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए दिन में 4-6 किलोमीटर साइकिल ज़रूर चलाएं, आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर कहीं आपको आना जाना भी है, तो अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, एक 40-45-50 साल की भी अगर आप हैं, तो 8-10 किलोमीटर अगर कहीं आपको जाना है, चाहे शहर में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी जाना हो, तो आप साइकिल से बहुत आराम से मस्ती में आप जा सकते हैं। क्योंकि साइकिल की सवारी अपने आप में भी एक बहुत ही आनंददायक और लाभदायक होती है।

0: छूट गया वो दौर जब साइकिल ही सवारी थी, पैदल चलने से बेहतर बस यही एक यारी थी। अब रफ्तार की दौड़ में आज हम पीछे हैं, लेकिन साइकिल की धीमी चाल से यकीन मानिए बड़े सुकून में हैं। जिंदगी भी कुछ कुछ साइकिल के जैसी ही है, क्योंकि साइकिल को चलाते समय बहुत संतुलन बिठाना पड़ता है। आप जब पैडल मारते हैं तो साइकिल संतुलित हो जाती है, और जिंदगी भी इसी तरह से है। जितना आप चलेंगे, जितना आप शारीरिक श्रम करेंगे, जितना आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, जिंदगी उतनी ही मस्त रहेगी, स्वस्थ रहेगी, आनंददायक रहेगी। आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास, अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ। एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद खास सूचनाएं खास आपके लिए।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाए और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आसपास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा यानी TGT परीक्षा बुधवार को यानी आज और कल गुरुवार को होगी। पहली पाली में 19 और दूसरी पाली में 12 केंद्र बनाए गए हैं। दो दिन होने वाली इस परीक्षा में 31,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। नकल रोकने पर विशेष ध्यान होगा। केंद्रों के गेट के पास हेल्प डेस्क गठित की गई हैं। परीक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई और बैठक में कहा गया है कि जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा। पहली पाली की परीक्षा 19 केंद्रों पर होगी, इसमें 8,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक होगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। ये परीक्षा 23 केंद्रों पर होगी। गुरुवार को पहली पाली की परीक्षा 19 और दूसरी पाली में 12 केंद्र होंगे। प्रत्येक केंद्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट के अलावा स्टेटिक मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है और नकल रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छलेसर कैंपस स्थित शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग खेल शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान और रोजगार परक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बना रहा है। वर्ष 1969 में स्थापित विभाग में खेल सुविधाएं, रोजगार परक पाठ्यक्रम और अनुभवी शिक्षक युवाओं के लिए आकर्षण बने हुए हैं। भविष्य की योजनाओं में यहां MPED और DPED जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के और अधिक अवसर मिल सकेंगे। शहर में सोमवार रात 2 घंटे तक हुई झमाझम बारिश में शहर में हर तरफ जलभराव हो गया। मौसम विज्ञान विभाग के ताजमहल के पश्चिमी गेट स्थित केंद्र पर 63 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई। आगरा में जून में एक दिन में ये सर्वाधिक बारिश होने का अनुमान है। प्रदेश में आरक्षी, नागरिक, पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा को मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक संयुक्त रूप से मंगलवार को समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था, गोपनीयता, प्रशासनिक तैयारियों एवं निगरानी तंत्र की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जाएं।

तथा प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण गंभीरता के साथ करे। तकनीकी गड़बड़ी से 30 मई को प्रभावित सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा का दोबारा आयोजन 6 और 7 जून को किया जाएगा। एनटीए ने मंगलवार देर रात इसकी घोषणा कर दी है। एनटीए ने प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए संशोधित प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं, जिन्हें आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। दिव्यांग यात्रियों को रियायती टिकट के लिए रेलवे काउंटरों के चक्कर काटने और बार बार फॉर्म भरने से अब मुक्ति मिल जाएगी। रेलवे के अलग से फोटो पहचान पत्र बनवाने की जरूरत भी नहीं है। अब वे देश के एकमात्र डिजिटल स्वावलंबन कार्ड यानी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र से ही घर बैठे ऑनलाइन रियायती टिकट

प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं, जिन्हें आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। दिव्यांग यात्रियों को रियायती टिकट के लिए रेलवे काउंटरों के चक्कर काटने और बार बार फॉर्म भरने से अब मुक्ति मिल जाएगी। रेलवे के अलग से फोटो पहचान पत्र बनवाने की जरूरत भी नहीं है। अब वे देश के एकमात्र डिजिटल स्वावलंबन कार्ड यानी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र से ही घर बैठे ऑनलाइन रियायती टिकट बुक कर सकते हैं। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की तरह अब सरप्लस राजकीय माध्यमिक शिक्षकों के तबादले समायोजन ऑनलाइन किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए मंगलवार को तबादला नीति जारी कर दी है। सभी संवर्ग में 20% तबादले ही किए जा सकेंगे। सीबीएसई द्वारा ऑनलाइन पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया मंगलवार को सुबह शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही छात्रों के मन से जुड़े कई सवाल हैं और इनको लेकर सीबीएसई ने एक विस्तृत जानकारी साझा की है। अपने एक्स हैंडल पर छात्रों के सवाल और उनके जवाब देने शुरू कर दिए हैं। खरीफ की फसलों के लिए खाद नहीं मिल पा रहा है, किसान सहकारी समिति और बाजार के चक्कर काट रहे हैं। कहा जा रहा है कि जुलाई से समितियों पर खाद मिलना शुरू हो जाएगा। खरीफ की फसलों में प्रमुख फसल धान की है, जिसकी पौध तैयार करने से लेकर रोपे जाने की तैयारी की जा रही है। मक्का खरीद के लिए 15 जून से क्रय केंद्र खोले जाने की भी तैयारी की जा रही है। 3 क्रय केंद्र खोले जाने की योजना है। पिछले साल भी 3 ही क्रय केंद्र खोले गए थे। हालांकि अभी मूंग के क्रय केंद्र खोले जाने को लेकर कोई तैयारी होती दिखाई नहीं दे रही है, जबकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 13,000 हेक्टेयर रकबा बढ़ा हुआ है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने के ठीक एक दिन बाद मंगलवार को ग्रीन गैस कंपनी ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के दाम में 1.5 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। यह वृद्धि 26 दिन के बाद हुई है। शहर में सीएनजी की कीमत 99.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत नागरिकों को शारीरिक रूप से फिट बनाए रखने के लिए खेल विभाग 7 जून को साइकिलिंग ड्राइव आयोजित करेगा। क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी के अनुसार विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में सुबह 6 बजे सदर बाजार स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम से साइकिलिंग ड्राइव शुरू होगी। ये रैली माल रोड, लाल बहादुर शास्त्री चौराहा, तारघर चौराहा, जीपीओ चौराहा और अवंतीबाई चौराहे होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचेगी। प्रतिभागियों से वेबसाइट पर पंजीकरण कराने की अपील की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए प्रदेश सरकार इस वर्ष भी आर्थिक मदद देगी। जिलाधिकारी के अनुसार कलेक्ट्रेट सभागार में शादी अनुदान योजना की एक समीक्षा बैठक की गई। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आगरा जनपद को 145 लाख से अधिक का बजट जारी किया है, जिससे जिले की लगभग 1400 से अधिक बेटियों के हाथ पीले कराए जाएंगे। पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना से 1200 से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हुए थे। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों की वर्ष 2022 की प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित कराने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 23 दिन में परीक्षाफल घोषित कर दिया है। मंगलवार को घोषित किए गए परीक्षाफल में 624 पदों के सापेक्ष 2253 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के परिणाम ने हर किसी को चौंका दिया है। 331 पदों के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया में ऐसा परिणाम सामने आया है कि एक भी अभ्यर्थी अंतिम यानी तृतीय चरण की परीक्षा के लिए पात्र नहीं मिला। हिंदी आशुलेखन में कोई भी अभ्यर्थी 80 शब्द की त्रुटि रहित गति नहीं पा सका।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों और परिषद से मान्यता प्राप्त अनुदानित और स्ववित्त पोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डन, पूर्णकालिक शिक्षकों, प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों और उनके आश्रित परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने

0: की तैयारी की जा रही है। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं खोई हुई व्यक्तियों के बारे में कुछ सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार राकेश अग्रवाल पुत्र श्री सुंदरलाल निवासी देवनगर गली नंबर 8 थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद। राकेश अग्रवाल दिनांक 22 मार्च 2026 से रात 9 बजे से अपने घर से लापता है। राकेश अग्रवाल की उम्र 65 वर्ष है, रंग गेहुआ है, इकहरा बदन है और घटना के समय राकेश अग्रवाल ने पैंट शर्ट पहना हुआ था। राकेश अग्रवाल के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार हरविलास निवासी ग्राम शादीपुर पोस्ट अराव जनपद फिरोजाबाद। हरविलास दिनांक 7 अप्रैल 2026 से अपने घर से लापता है। हरविलास की उम्र 55 वर्ष है, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ है, शरीर की बनावट मजबूत है, चेहरा गोल है, खिचड़ी बाल है। हरविलास के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी थाना अराव जनपद फिरोजाबाद को सूचित कर सकते हैं। एक और सूचना के अनुसार राम विकास निवासी गांव बोथरी थाना अराव जनपद फिरोजाबाद। राम विकास दिनांक 18 मार्च 2026 से शाम 4 बजे से अपने गांव बोथरी से लापता है। राम विकास की उम्र 32 वर्ष है, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा है, शरीर सामान्य है, चेहरा गोल है, बाल काले हैं। घटना के समय नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था। राम विकास के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी थाना अराव जनपद फिरोजाबाद को सूचित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज का आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 8 बजे हैं, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्य

0: वाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल से दवाई ले रहा हूँ, जो सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय

0: शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज नई दिल्ली में समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्चस्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान

0: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस: Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, elected President of 81st Session of UN General Assembly, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare,

0: PV Sindhu advanced to the second round of the Indonesia Open after overcoming a tough challenge in the opening match, returning to the world's top 10 rankings for the first time since October 2023. Sindhu defeated Thailand's Busanan Ongbamrungpan in the first round of the prestigious BWF Super 1000 tournament in Jakarta. However, it was disappointment for India in men's singles as Lakshya Sen crashed out in the opening round after suffering a defeat. Today in men's singles, H.S. Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang. In men's doubles, the Indian duo of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will begin their campaign against Malaysia's Kai King Hang and Arun Thai. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Shagun. All dailies lead with the centre's action in the wake of irregularities in CBSE exams. Hindustan Times opens with the headline, CBSE Chairman, Secretary shunted amid outcry, while the Tribune adds, Government forms panel to probe on-screen marking. Pioneer reports, CBSE re-evaluation portal faces new cybersecurity challenges. Indian Express on its editorial page writes, Girls rewrite G-script, campus must keep pace. For the first time, more than 10,000 girls have qualified for admission to premier engineering institutions, including IITs. This year, GE witnessed a striking improvement that has pushed the number of successful females up by almost 89% since 2019. In international news, Asian Age mentions Israel PM calls off Beirut strike after heated call with Trump, while the Pioneer reports Trump slams Netanyahu over Lebanon offensive. Times of India informs El Nino is rapidly developing and is set to impact global temperature and rainfall patterns under the headline World Meteorological Organization's El Nino Alert raises odds of severe impact on monsoon with 80% chance of onset during June-August period. And finally, under a piece titled Tigress Zenith Gives Birth to Four Cubs in Odisha Simlipal, the Hindu informs the translocation effort aimed at enhancing the genetic diversity of tigers in Odisha's Simlipal Tiger Reserve has reserved major boosting, adding a proud chapter to Odisha's natural resources and wildlife conservation efforts. With that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a five-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 International to seal 3-match series to 1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपए माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजरकर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलाकवामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। अब खबरें तफसील से। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वो भारत वेनेजुएला के ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा बातचीत करेंगी। दोनों ममालिक तिजारत सरमायाकारी तवानाई काबिल तजदीद तवानाई हिफ्जान सेहत और दवा साजी समेत अहम शोबों में बाहमी तआवुन के इम्कानात का जायजा लेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर

0: जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के उमूर खारजा, मईशत, खजाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक वजरा पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी मोहतरमा रोड्रिक्स भी के हमरा भारत पहुंचेगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारत और वेनेजुएला के दरमियान खास तौर पर तवानाई और तजारत के शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस दौरे से दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तहकम होने और मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। वजीर आजम के साथ बातचीत के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी, तजारत और सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकल व हमल और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वेनेजुएला का वफद तवानाई, दवासाजी और ऑटोमोबाइल से मुतालिक शोबों से वाबस्ता इदारों का दौरा करेगा। इस दौरे का मकसद इश्तराक के मौके का जायजा लेना और भारत की तकनीकी और सनअती सलाहियतों के बारे में अहम मालूमात हासिल करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत की ब्रिक्स सदारत में आज ओडिशा के शहर पुरी में ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की पहली जाती तौर पर तकनीकी मीटिंग शुरू हो रही है। इस तीन रोजा मीटिंग में 11 ब्रिक्स और पार्टनर मुमालिक के मंदुबीन, पॉलिसी साज और आफात के बंदोबस्त के माहिरीन शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में आलमी खित्ते जनूब में आफात के ताल्लुक से लचकदारी को मुस्तहकम करने, पायदार तरक्की को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डी के शिव कुमार को आज सपहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। रियासत के गवर्नर थावरचंद गहलोत आज शाम 4 बजे बेंगलुरु में वाकई लोक भवन में जनाब शिव कुमार और नई काबीना के अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। इससे पहले जनाब सिद्धरमैया के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद जनाब शिव कुमार के लिए इस आला ओहदे के लिए रास्ता साफ हो गया था। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस में लंबे अरसे से इक्तदार के लिए जारी रस्साकशी भी खत्म हो गई। जनाब शिव कुमार को 2023 के असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत के वक्त से ही इस आला ओहदे के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। जुमेरात को जनाब सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में वाकई अपनी रिहाइशगाह पर सुबह मुनक़िद होने वाली एक मीटिंग में अपनी काबीना के वज़रा को अपने इस्तीफे के ताल्लुक से बताया था और इस बात का इशारा दिया था कि कांग्रेस आला कमान की हिदायत के मुताबिक जनाब शिव कुमार वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। मगरबी बंगाल हुकूमत आज समाजी फलाह बहबूद की एक बड़ी पहल अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेगी। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी इस स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इस इफ्तिताही तकरीब में अन्नपूर्णा योजना के मुस्तफिदीन तमाम ब्लॉक्स, म्यूनिसपैलिटियों और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। मकामी सतह पर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए अरकान असेंबली को मकामी सतह पर प्रोग्रामों में मदू किया गया है और वजीर आला का असल प्रोग्राम तमाम ब्लॉक और म्यूनिसिपल हेडक्वार्टर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बराह रास्त नशर किया जाएगा। वजीर आला के इफ्तिताही खिताब के फौरन बाद इजाजतनामे तकसीम किए जाएंगे। हर ब्लॉक म्यूनिसपैलिटी और कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 100 मुंतखब मुस्तफिदीन बाकायदा इजाजतनामे हासिल करेंगे। पहले मरहले में आज से मुस्तफिदीन को 3,000 रुपए बराह रास्त उनके खातों में मिलने शुरू हो जाएंगे। नाबंदा में इफ्तिताही तकरीब 12:30 बजे मुनाकिद की जाएगी, जिसमें खवातीन, बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद से मुतालिक महकमे की वजीर अग्निमित्र पॉल शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में गुजश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदामात किए। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आपके लिए अहम शोबों में गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खुसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम मुतवस्सित तबके की बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 साल में हुकूमत ने वसी पैमाने पर इसलाहत करके मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाया है। आसान टैक्स निजाम और मजबूत बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन के निजाम की वजह से उनके माली तहफुज में इजाफा हुआ है। نئے ٹیکس نظام کے تحت سالانہ 12

0: लाख रुपए तक कमाने वाले अफराद हरगिज टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। खासतौर पर मुतवस्सित तबके के लिए जीएसटी निजाम ने टैक्सों को आसान बनाकर और रोजमर्रा के अखराजात को कम करके 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने करोड़ों लोगों को महफूज मकानात फराहम करके उनकी जिंदगियों को बदल दिया है, जिससे कई ठोस फायदे हुए हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि ये स्कीम गरीबों के लिए रिहाइश को यकीनी बना रही है और किराए के मकानात में रहने वालों के लिए राहत का बाइस बन रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था, आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 43.52 करोड़ हेल्थ कार्ड्स बनाए हैं, जिससे सेहत की देखभाल के तहफुज तक रसाई में इजाफा हुआ है। जबकि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना स्कीम जन औषधि केंद्रों के जरिए 50% से 80% कम कीमतों पर मयारी जेनरिक अद्वियात फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर अद्वियात मार्केट के मुकाबले इंतहाई सस्ती कीमत पर दस्तयाब हैं।
2: लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
3: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश के वजीर ख्वाजा खलीलुर रहमान को अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। डॉक्टर रहमान को अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के लिए कराए गए इंतखाब में कामयाबी हासिल हुई है। उन्हें 99 वोट मिले, जबकि इस कसीर मुल्क निजाम के लिए कुब्रुस के खसूसी सफीर एंड्रिस काकोरिस को 91 वोट मिले। अक्वाम मुत्तहिदा के आला मुजाकिराती पॉलिसी साज और नुमाइंदगी करने वाले इदारे के सरबराह के तौर पर उनकी 1 साल की मुद्दत सितंबर में शुरू होगी। ये सदारत अलग अलग खित्तों के पास बारी बारी रहती है और इस मुकर्रा उसूल के मुताबिक 81वें सेशन के सदर को एशिया बहरुल काहिल ग्रुप से मुंतखब किया जाना था। अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मुंतखबा सदर डॉक्टर रहमान ने कहा कि वो अपनी मुद्दत कार के दौरान इस इदारे का काम इंसानी हकूक पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए करेंगे और सभी रुकन मुल्कों को फाल रखेंगे। वजीर खाजा डॉक्टर अजय शंकर ने अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का सदर मुंतखब होने पर डॉक्टर रहमान को मुबारकबाद दी है। भारतीय शहरी जब जर्मन हवाई अड्डों से होकर किसी तीसरे मुल्क जाएंगे तो उन्हें आज से ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। भारत में जर्मन सिफारतखाने ने ऐलान किया है कि इस छूट से उन भारतीय शहरियों के सफर में सहूलत हो जाएगी जो जर्मनी के रास्ते किसी दूसरे मुल्क जाते हैं। भारत ने अपने शहरियों के लिए ट्रांजिट वीजा को खत्म करने के लिए जर्मनी के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने कहा कि यह ऐलान इस साल जनवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान बातचीत के बाद किया गया है, जब जनाब फ्रेडरिक भारत के दौरे पर आए थे। वजारत ने कहा कि इस नए इंतजाम से दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फरोग हासिल होगा। जम्मू कश्मीर में रियासती इंतखाबी कमीशन आज से आला सतह की 2 रोजा मीटिंग मुनाकिद करेगा। ये मीटिंग जिला इंतखाबी अफसरान और दीगर शख्सियतों के साथ की जाएगी, जिसका मकसद मरकज के ज़ेर इंतजाम इस इलाके में पंचायत और जिला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रियासती इंतखाबी कमिश्नर शांत मनु इस मीटिंग की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और ब्लॉक तरक्याती काउंसिलों का कामकाज 9 जनवरी 2024 को रोक दिया गया था। बल्दियाती इदारों की मुद्दत कार 2 अक्टूबर 2023 और जिला तरक्याती काउंसिलों की मुद्दत कार 24 फरवरी 2026 को मुकम्मल हो गई थी। हुकूमत ने साल 2026 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यह बावकार अवार्ड सदर जमहूरिया की जानिब से ऐसे बच्चों को अता किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक खिदमत, माहौलियात, खेलकूद, आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हों। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तूफानी झक्कड़ की सूरतहाल के लिए ऑरेंज अलर्ट

0: जारी किया है। आईएमडी ने केरला और माहे में अगले 2 से 3 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कल तक अंडमान और निकोबार जजायर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश और शिमाल मशरकी खित्ते में गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। खवातीन क्रिकेट में कल रात टोरंटो में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हीथर नाइट और एलिस कैप्सी की शानदार शराकत दारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खवातीन ने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 18.3 ओवर्स में 4 विकेट पर 184 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाय होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की हलफबरदारी से मुतल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार की सुर्खी है, 5 नए जजों को हलफ दिलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 37 हुई। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, मोदी सरकार ने CBSE चेयरमैन व सेक्रेटरी को ओहदे से हटाया, पेपर लीक मामले में कोताहियों की जांच कराएगी हुकूमत। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में बीजेपी सदर से नेपाल के वफद की मुलाकात। अखबारात की एक और अहम सुर्खी है, भारत और जनूबी अफ्रीका ने 2 तरफा रिश्तों को और मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि मजबूत, खुशहाल और खुदकफील भारत की तामीर में ताउन दे कबायली नौजवान।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा DK शिवकुमार को आज सपहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा SJ शंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजरकर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी आगरा। इसे आप सुनते हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 8:45 और 20 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गाने। कार्यक्रम है गीतांजलि और मैं हूं आपका रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा। आवाज के हम सफर साथियों को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतांजलि कार्यक्रम का पहला सदाबहार गीत शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में है। फिल्म का नाम है बाजी।

कार्थी आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कामचोर इस फिल्म का एक गीत आइए सुनते हैं। इंदीवर की गीत रचना है, संगीत राजेश रोशन का, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: विकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
0: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर यह है अजीज कैसी के बोल। फिल्म का नाम है दयावान, आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था कामचोर। गीत लिखा था इंदिवर ने, धुन बनाई थी राजेश रोशन ने।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प

दयावान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल। गीत लिखा था अजीज कैसी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सदाबहार फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत

ये आवाजें थी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। फिल्म का नाम था प्यार झुकता नहीं। गीत के बोल लिखे थे SH बिहारी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की। फिल्म का नाम है मरते दम तक।

अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के गाए फिल्म मरते दम तक के इस गीत के साथ ही आज का गीतांजलि कार्यक्रम समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 9:15 होने को ही हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

रेलवे का हिस्सा बने। श्री वर्मा ने कहा कि रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी गई हैं। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 मई को 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर प्रदेश की राजधानी पहुंचे। 6 मई की रात को उन्होंने लखनऊ के निजी होटल में फल निर्यातकों के साथ निर्यात को बढ़ाने पर चर्चा की। अगले दिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत आने वाले केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में उन्होंने फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। श्री चौहान ने साफ कहा कि अब केवल ज्यादा उत्पादन से बात नहीं बनेगी, बल्कि भारत को वैश्विक फल बाजार में मजबूत पहचान लाने के लिए गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक और निर्यात मानकों पर गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि खेती को खेत तक सीमित नहीं रखा जा सकता, अब उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, बाजार और निर्यात तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना समय की मांग है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किसानों का विकास आवश्यक है। श्री चौहान ने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश की कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 मई 2026 को लखनऊ वासियों को विकास की सौगात दी। उन्होंने इंदिरा

0: प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में 413 करोड़ की 342 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने सभी 17 नगर निगमों के महापौर, 200 नगर पालिका परिषद, 545 नगर पंचायतों के चेयरमैन और लगभग 14,000 पार्षदों को 3 वर्ष का कार्यकाल सम्पन्न होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा। उन्होंने कहा लखनऊ को स्वच्छता रैंकिंग में 3रा स्थान मिला है, अब इसे पहले स्थान पर लाना है। श्री योगी ने कहा
1: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है।
0: जनगणना 2027 के तहत स्वगणना का काम लखनऊ में 7 मई 2026 से शुरू हुआ और 21 मई 2026 तक चला। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों ने स्वगणना में भाग लिया। अब जनगणना के प्रथम चरण के तहत प्रगणक घर घर जाकर मकान की गणना कर रहे हैं। 22 मई को शुरू हुआ यह कार्य 20 जून 2026 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी और निदेशक शीतल वर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मकान की गणना के पहले दिन 1 करोड़ से अधिक मकान को सूचीबद्ध किया गया है। लखनऊ में जेठ के बड़े मंगलों की धूम मची हुई है। लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर से शुरू हुई यह परंपरा अब प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में प्रत्येक बड़े मंगल पर हनुमान जी के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक हजारों भंडारे आयोजित हो चुके हैं। इस बार अधिमास लगने के कारण 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 28 मई को ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। 30 मई तक चले बकरीद पर्व पर लोगों ने कुर्बानी की परंपरा का निर्वहन किया। लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की थी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2026 के संस्करण में 7 मुकाबले लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए, जिनका लुत्फ शहरवासियों के साथ साथ अन्य राज्यों और शहरों से आए लोगों ने भी उठाया। अब इकाना स्टेडियम में 17 जून 2026 को भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला जाएगा।
2: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का।
3: भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के साथ साथ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के भी सपने पूरे हो रहे हैं। सरकार का संकल्प है कि हर वर्ग को सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का लाभ मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे गरीबों को रहने के लिए अपना छत मिली है जो किराए पर रहते थे। गाजियाबाद के रहने वाले पवन कौशिक ने बताया कि पहले वो किराए के मकान में रहते थे और हर एक 2-4 साल में उनको मकान बदलना पड़ता था, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गाजियाबाद की बापूधाम योजना में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान लेने का सपना देखा, जो कि पूरा भी हुआ। लाभार्थी पवन कौशिक ने बताया,
4: मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो है वो GDA में फ्लैट आवंटन के लिए योजना निकाली गई है, तो मैंने उसमें 2020 में आवेदन किया था। अभी मुझे 1.5 महीने पहले मेरी रजिस्ट्री हुई है, साथ के साथ कब्जा भी हो गया। सरकार ने बहुत अच्छा किया।
3: वही गाजियाबाद के अभिषेक कुमार कहते हैं कि एक मकान हर इंसान का सपना होता है। भारत सरकार ने मकान देकर निम्न वर्ग के सपने को पूरा किया। उन्होंने सरकार की भागीदारी से कम कीमत में उपलब्ध हुए मकान के लिए सरकार का आभार भी जताया। वहीं GDA उपाध्यक्ष नंद किशोर कलान ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न आवासीय योजनाओं के बारे में बताया। सरकार समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को हर वो सुविधा देना चाहती है जिससे वह अपने आप को सक्षम महसूस कर सके। मकान हर किसी का एक बहुत बड़ा सपना होता है, उस मकान को सरकार गरीबों के लिए भी आसानी से उपलब्ध करा रही है। उन्होंने जनपद गाजियाबाद में चल रही अन्य आवासीय योजनाओं के बारे में बताया और EWS के तहत भविष्य में आने वाली योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया,
5: सरकार की भी नीति है कि गरीब लोग अधिकतम से अधिकतम इसमें लाभान्वित हो। जो हमारे प्राधिकरण की खुद की योजनाएं हैं, उसमें भी हम छोटे साइज के 40 स्क्वायर मीटर के, 60 स्क्वायर मीटर के, 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स, जो कि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सुलभ होते हैं, उसको हम लॉटरी के माध्यम से अधिक जनता को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।
3: गाजियाबाद के सिकंदरपुर में बने हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। हवाई अड्डे का विस्तार 14 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। इसमें से 6.8 एकड़ जमीन की खरीद को लेकर किसानों ने सहमति बनाने का जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। शेष 7.2 एकड़ जमीन की खरीद के लिए सिकंदरपुर गांव के किसानों से अब जिला प्रशासन द्वारा वार्ता शुरू कर दी गई है। ऐसे में हिंडन हवाई अड्डे की उड़ान बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ जैसे सीमित शहरों तक नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक होगी। इस गाजियाबाद के विकास को पंख लगेंगे।

0: और आसपास के जिलों के लोगों के लिए भी एयर कनेक्टिविटी की सुविधा बेहतर होगी। शासन के निर्देश पर जनपद की 67,000 ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने के लिए उनको सिलाई कढ़ाई से लेकर मोबाइल रिपेयरिंग, खेती करने, बैंकिंग कार्य करने सहित अन्य कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रशिक्षण देने के बाद सरकार की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह को कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाती है। कम ब्याज पर बैंक से लोन दिलाया जाता है। वर्तमान में 2400 महिला स्वयं सहायता समूह हैं। वित्तीय वर्ष 26-27 में सरकार ने जिले में 6,700 नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाने के निर्देश दिए हैं। एक महिला स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम 10 महिलाएं शामिल होती हैं। ऐसे 67,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6,700 महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। सरकार की एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक खेल की सफलता के बाद अब ODOC एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू की गई है। इसमें स्थानीय खान पान और स्वाद को ध्यान में रखते हुए इसे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना आवश्यक है। इसी क्रम में गाजियाबाद को सोया चाप के बाद हरी मिर्च के अचार को भी इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है। जनपद में सोया चाप के कारोबार से 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। वहीं हरी मिर्च से तैयार अचार को भी एक जनपद एक व्यंजन योजना में शामिल किया गया है। इस अचार के निर्माण और व्यापार से 2500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 9:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं गीत पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम है गीत मंजूषा और कार्यक्रम का पहला गीत GM दुर्रानी और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है हम सब चोर हैं। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

0: ओपी नैयर की धुन पर आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। आवाजें थी मोहम्मद रफी और जीएम दुर्रानी की। फिल्म का नाम था हम सब चोर हैं। बारिश फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आशा भोसले और चितलकर ने इसे गाया है। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सी रामचंद्र।
1: तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, हाँ बोलो ना।

ऐसा घटिया काम करते भी तो क्यों करते। हाय रे डॉज गाड़ी की इंजन की कसम,

बारिश फिल्म का गीत आपने सुना, चितलकर और आशा भोसले की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने गीत लिखा था, धुन बनाई थी सी रामचंद्रन ने। 12 o'clock इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं। इसे मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने गाया है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

12 ओ क्लॉक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। ओपी नैयर की धुन पर गीत तैयार किया था मचरूह सुल्तानपुरी ने। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज पर वर्मा मलिक का लिखा गीत। फिल्म का नाम है हम तुम और वो, आवाज किशोर कुमार की।

किशोर कुमार की आवाज में आपने वर्मा मलिक का लिखा गीत सुना। तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम था हम तुम और वो। सीआईडी फिल्म का एक गीत आइए सुनते हैं। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और गीता दत्त की। जानिसार अख्तर का गीत है, संगीत ओपी नैयर का।

मोहम्मद रफी और गीता दत्त के गाए फिल्म सीआईडी के इस गीत के साथ ही गीत मंजूषा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बलवीर सिंह बघेल के गाए ब्रज लोकगीत।

0: लोक संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बलवीर सिंह बघेल के गाए ब्रज लोकगीत। लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता। आप सभी को एक बार फिर विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हमने सिलसिला फिल्म से लिया है। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है शिव हरी ने, आवाजें हैं लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल,

हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू? ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है? ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

सिलसिला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, धुन बनाई थी शिवहरी ने।

इस गीत में आप दो आवाजें सुनेंगे, अलका याग्निक और कुमार शानू की। फिल्म का नाम है सिलसिला है प्यार का।

0: सिलसिला है प्यार का। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में। गीतकार थे समीर, संगीतकार जतिन ललित। जाबाज फिल्म का एक गीत आइए सुनते हैं। इंदीवर के लिखे गीत को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने। आवाजें हैं मनहर उदास और साधना सरगम की।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

ये दो आवाजें थीं मनहर उदास और साधना सरगम की। फिल्म का नाम था जांबाज। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

ये है सुरसरिता कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत। फिल्म का नाम सच्चाई की ताकत। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और अमित कुमार।

ये युगल आवाजें थीं अमित कुमार और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम था सच्चाई की ताकत। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आरडी बर्मन की तर्ज पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। गीतकार हैं गुलशन बावरा, फिल्म का नाम है ये वादा रहा, आवाजें हैं कि

ये वादा रहा। इस फिल्म का युगल गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ। गीत लिखा था गुलशन वावरा ने, धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वसीम अहमद खान का ख्याल गायन। प्रस्तुत है आपका गाया राग वैरा की भैरव। आपके साथ तबले पर संगत की है प्रभात वशिष्ठ ने। तो आइए सुनते हैं वसीम अहमद खान का गाया राग वैरा की भैरव।

श्रोताओ, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वसीम अहमद खान का राग भैरवी बैरागी भैरव में ख्याल गायन। तबले पर संगत दे रहे थे प्रभात वशिष्ठ। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, आज के कलाकार, अपने रेडियो साथी नीतू दुबे के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अपने पसंदीदा कार्यक्रम। तो साथियों, हम आज आपको आज के कलाकार में एक ऐसी अभिनेत्री, फिल्म अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने फिल्मी पर्दे पर काम करना शुरू कर दिया। जी हां साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की प्रतिभाशाली अभिनेत्री सारिका की। इनका जन्म 3 जून यानी आज ही के दिन 1960 को नई दिल्ली में हुआ था। इनका पूरा नाम सारिका ठाकुर है। बचपन से ही अभिनय के प्रति उनकी रुचि थी, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्होंने बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने बाल कलाकार के रूप में हिंदी फिल्मों में अपनी यात्रा आरंभ की और जल्द ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। साथियों, आगे बातें और भी होती रहेंगी। आइए पहले सुनते हैं इनकी ही फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

तो साथियों, हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री सारिका जी की, जो भारतीय फिल्म अभिनेत्री और कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 5 साल की छोटी सी उम्र में बाल कलाकार के रूप में की थी। 1960 के दशक में हिंदी फिल्मों में इन्होंने एक लड़के मास्टर सूरज की भूमिका निभाई। और पता है, सबसे ज्यादा पसंद करने वाली इनकी बाल कलाकार के रूप में जो फिल्म रही, वो 1967 में आई फिल्म हमराज थी। बाद में इन्होंने सचिन के साथ राजश्री प्रोडक्शन की शुरुआत की। गीत गाता चल के साथ अपने करियर की इन्होंने शुरुआत की और कई हिंदी मराठी फिल्मों में अभिनय किया। इनका जन्म नई दिल्ली में एक महाराष्ट्रियन और राजपूत परिवार में हुआ था। पारिवारिक परेशानियों के चलते ही इन्होंने छोटी उम्र में काम करना शुरू किया। साथियों, कुछ समय बाद ये घर छोड़कर चेन्नई चली गई और वहां इनकी मुलाकात एक्टर कमल हसन से हुई और इनकी नजदीकियां बढ़ी और इन्होंने कमल हसन से शादी कर ली।

श्रद्धा और सारिका अपने जीवन में आगे बढ़ी और उन्होंने दो बेटियों को जन्म दिया, श्रुति और अक्षरा। साथियों, बॉलीवुड के बहुत से सितारे ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी पर्दे के सामने कुछ और होती है और पर्दे के पीछे कुछ और ही दुनिया में वो जी रहे होते हैं। जी हाँ साथियों, फिल्मों में अपनी खूबसूरती और अभिनय से सबका दिल जीतने वाली अभिनेत्री सारिका की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। ये फिल्मों की हिट हीरोइन थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्हें बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। इनकी फिल्मों की बात करें तो जानी दुश्मन, गृह प्रवेश, बिन फेरे हम तेरे, क्रांति, पांच कैदी जैसी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया। सारिका को सन 2000 में हे राम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अलावा 2007 में फिल्म परजानिया के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्मों के अलावा वो युद्ध और डर सबको लगता है जैसे टीवी शोज का भी हिस्सा रहीं।

साथियों ऐसे ही काम करते हुए सारिका आगे बढ़ती रहीं। 2022 में आई फिल्म ऊंचाई में सारिका ने अभिनय किया और साबित किया कि कलाकार अपने अभिनय से अपनी ओर सबका ध्यान खींची लेता है। ऐसी अभिनेत्री हैं सारिका ठाकुर। सारिका केवल अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील और समर्पित कलाकार के रूप में भी जानी जाती हैं। उन्होंने समय समय पर चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाकर ये सिद्ध किया कि सशक्त अभिनय किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। साथियों सारिका ने कई फिल्मों में अभिनय किया और अपने अभिनय से आलोचकों और दर्शकों दोनों की प्रशंसा प्राप्त की।

साथ ही अपने लंबे फिल्मी करियर में सारिका ने कई प्रतिष्ठित कलाकारों और निर्देशकों के साथ काम किया। उनकी प्रतिभा को सभी ने सराहा। सारिका ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वे उन कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने समय के साथ स्वयं को निरंतर निखारा और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने अभिनय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जैसा कि हमने आपको बताया कि व्यक्तिगत जीवन में इन्होंने अनेक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य के साथ किया। उनकी मेहनत, संघर्ष और कला के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सारिका की पहचान केवल एक सफल अभिनेत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसी कलाकार के रूप में है जिन्होंने अपने अभिनय से मानवीय भावनाओं को बड़े प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया।

साथियों, आज सारिका जी के जन्मदिवस पर हम उनके स्वस्थ, सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम आज के कलाकार अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। साथियों, बने रहिए हमारे साथ इस रेडियो के सफर पर, जिसमें हम ले चलते हैं आपको अपने अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें हम आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। जी हां साथियों, शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम है उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी, ये बात बिल्कुल सच है। जरा सोचिए, हम बिना शारीरिक श्रम के रह नहीं सकते और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह काम करता है। अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो ये बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा मतलब इसमें कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। आप सोचिए, अगर हम बैठे बैठे सिर्फ खाते रहें तो शरीर की क्रियाशीलता तो रहेगी ही नहीं। और एक और बात, बिना किसी काम करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद भी नहीं करता, तो कोई नहीं चाहेगा कि उसे कोई पसंद ना करे। तो इसलिए मेहनत कीजिए, काम कीजिए और स्वस्थ रहिए।

जी हाँ साथियों, आप यूं ही चलते रहेंगे तो आपका शरीर भी चलता रहेगा। साथियों, आप चाहे गाड़ी में चलें, कार, बस में चलें, ट्रेन में या साइकिल पर, आपको चलना ही है। साथियों, साइकिल से याद आया, आपको पता है प्रत्येक वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य साइकिल के महत्व को समझना और लोगों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। स्वास्थ्यवर्धक परिवहन के साधन को अपनाने के लिए ये प्रेरित करता है। साथियों, आजकल

बढ़ता प्रदूषण हम सबके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आज के युग में सबको काम करने की जल्दी है, ठीक है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य की भी तो अनदेखी नहीं की जा सकती। दूर का सफर है तो ठीक है, आप गाड़ी बसों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन छोटे मोटे काम तो आप साइकिल से कर ही सकते हैं। साइकिल न केवल आवागमन का एक साधन है बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी भी है। पता है, नियमित रूप से साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ रहता है, हृदय मजबूत होता है और मोटापा, मधुमेह जैसी कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। ये एक ऐसा व्यायाम है जो हर आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक माना जाता है। तो मेहनत करना जरूरी है और साथ साथ अपने शरीर का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।

तो साथियों अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और अब हम बात करते हैं अपने वाहन यानी कि साइकिल के बारे में। साथियों आज के समय में बढ़ते वाहनों के कारण प्रदूषण और ईंधन की खपत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में साइकिल पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम बन सकती है। साइकिल चलाने से न तो धुआं निकलता है और न ही ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे हमारा वातावरण भी स्वच्छ रह सकता है। पहले साइकिल लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। पता है जब लोग साइकिल का इस्तेमाल ज्यादा करते तो बीमार भी कम पड़ते थे और शारीरिक श्रम भी ज्यादा करते थे। समय के साथ बदलाव आया, ज्यादातर काम मशीनें करने लगीं। उसका नतीजा क्या हुआ? शरीर का काम कम हो गया, और जब शरीर ने काम करना कम कर दिया तो देखिए ना, छोटी छोटी उम्र में ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिनका पहले नाम भी नहीं पता था। बच्चों ने बाहर खेलना कम कर दिया है, ज्यादातर समय मोबाइल को देते हैं। जब मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो शारीरिक श्रम कहां से होगा, और शारीरिक श्रम कम होने से बीमारियां तो होंगी ही। तो इससे बचने के लिए तन और मन दोनों को स्वस्थ रखें, व्यायाम करें, साइकिल चलाएं और काम करें।

जी हाँ साथियों, चलते रहिए और स्वस्थ रहिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है हमारा स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम और नियमित शारीरिक श्रम जरूरी है। घंटों एक जगह बैठकर काम करना, मोबाइल और कंप्यूटर का ज्यादा उपयोग और व्यायाम की कमी, ये ज्यादातर शारीरिक समस्याओं को जन्म दे रहा है। और ये हम सब जानते भी हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए समय नहीं निकालते। ऐसा नहीं है कि आप व्यायाम के लिए कई घंटे दें, छोटे छोटे अंतराल पर आप शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं, जैसे थोड़ा पैदल चलिए, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए, अपने काम उठकर स्वयं कीजिए। पता है, शारीरिक श्रम से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रक्त संचार बेहतर होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। शारीरिक श्रम केवल शरीर

को ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है। आप ज्यादा खाली बैठेंगे तो क्या करेंगे, फालतू की बातें सोचेंगे जिसका असर दिमाग पर होगा और तनाव बढ़ेगा और तनाव से तो तमाम तरह की बीमारियां होंगी। तनाव और बीमारियों से बचने के लिए शारीरिक श्रम करिए और खुश रहिए।

श्रोता, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने को है। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
3: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
3: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
3: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहां तक तापमान का प्रश्न है, यहां तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
3: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहां का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
3: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहां अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
3: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
2: जी।
3: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
3: जी हाँ जरूर
2: श्रोताओ, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
3: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
2: जी,
3: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की

0: जरूरत को पूरा करते हैं।
1: जी
0: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
1: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोबी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
0: जी
1: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
1: जी
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोबी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोबी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
1: जी।
0: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
4: अरे वो देखो बंदर। ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
4: ये तो रीच की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
4: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
3: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
4: ओ, अब मैं क्या करूं?
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
4: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
4: ये रीच तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
4: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
3: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
3: एक

0: तो बताओ रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
1: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
2: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम न आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
1: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुम लता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाता गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते

0: दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
2: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
3: अरे इंसान की नहीं लगी।
4: अरे
2: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
4: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
2: हा?
4: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
2: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
4: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
5: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
4: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
2: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
0: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
0: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
6: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
4: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
6: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
0: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
6: आप तो काम करती है ना?
0: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
6: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गाँव रैणी और आसपास के गाँवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
0: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों

0: के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा, गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
4: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
3: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
5: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ गौरमा, सब तैयार हैं, तैयार
5: हैं, किसी भी हाल में जंगल
4: कटने नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
3: ये है जंगल के उपकार,
4: मिट्टी पानी और बयान,
3: मिट्टी पानी और बयान।
1: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
6: अरे क्या कर रहे हो?
7: मेरा मुंह के ताक रहे हो? बजो शुरू, मारो
6: पेड़।
5: अरे भाई कौन है? रुको, इस हम चिपक जाएंगे पेड़ से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
7: दूरो, आगे बढ़ो।
5: अरे कहां से?
7: दो मिनट की बात हमें बताओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू, काटो पे।
5: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
7: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान

0: किसी ने भाग कर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
1: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

रेडियो वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला तराना ये सुनते हैं सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म से। स्वर अरिजीत सिंह का है।

0: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani.

श्रोता, इसी के साथ नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुश्तरका डिवीजनल खरीफ पैदावारी सेमिनार 2026 का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि खरीफ सेमिनार के जरिए हुकूमत किसानों को बीज के मेयार, टेक्नोलॉजी और जदीद ज़रई तरीकों के साथ साथ हुकूमती मंसूबों और तैयारियों से आगाह करती है। वज़ीर-आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश अनाज पैदा करने वाली सबसे बड़ी रियासत है। उन्होंने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश चीनी, आलू, दूध और एथेनॉल पैदावार में पहले नंबर पर है। वज़ीर-आला ने कहा कि खरीफ सेमिनार कीमियाई खादों और कीड़े मार अदवियात को कम से कम करने और ज़रात को मजीद कुदरती सतह पर बहाल करने में फ़ायदेमंद साबित होगा। अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। इससे पहले कल वज़ीर-आला ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 270 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-आला ने कहा कि डबल इंजन हुकूमत ने तरक्की, तहफ्फुज़ और रोजगार का नया माहौल बनाया है। जनाब योगी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि स्कीमों का फायदा आखिरी शख्स तक पहुंचे।
1: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
0: वज़ीर-आला ने कल ही गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से सियाहत की तरक्की और खूबसूरती के मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबका हुकूमतों ने झीलों और तालाबों को नज़रअंदाज किया, लेकिन डबल इंजन हुकूमत उनकी हिफाजत कर रही है। ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की एक अहम मीटिंग 4 और 5 जून को वाराणसी में होगी। इस बैनुल अक्वामी इवेंट में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमीरात समेत 11 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुलाकात के दौरान सकाफत, विरसे के तहफ़ और बाहमी सकाफती तआवुन से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ब्रिक्स के मंदूबीन के काशी दौरे को यादगार बनाने के लिए सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। वाराणसी के रीजनल कल्चरल ऑफिसर डॉक्टर राम नरेश पाल ने बताया कि मंदूबीन की आमद पर हवाई अड्डे से लेकर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फोक डांस पेश किया जाएगा। हुकूमत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जरिए अख्तियार करदा ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक मामलात की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सरबराही कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरमैन एस राधा चौहान करेंगी। कमेटी एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पर्सनल और ट्रेनिंग महकमे को पेश करेगी। इस दरमियान बोर्ड ने कल दर्जा 12 के तलबा के लिए स्कैनशुदा जवाबी पर्चों में पाई जाने वाली गलतियों की तस्दीक और जवाबात का दोबारा जायजा लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सहूलत सिर्फ उन तलबा के लिए दस्तियाब होगी जिन्होंने अपनी जांचशुदा जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपियां हासिल कर ली हैं। इस दरमियान इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम इससे कबल वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। CBSE सेक्रेटरी का भी तबादला कर दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरसों में गैर मामूली तब्दीली देखी है जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूल पर कारफरमा है। आज हम ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर एक खसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
2: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम

0: मनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
1: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। अब बहने सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार सुन रही सभी बहनों को उनकी रेडियो मित्र मंगला शर्मा पाराशर का नमस्कार। अच्छा बहनों, एक बात बताइए कि आप अपने दैनिक जीवन में ऐसी कितनी चीज़ों को जानती हैं जिनके अनगिनत फायदे हों। हालांकि बहनों, ऐसी चीज़ों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन इन्हीं में से एक चीज़ आज हमारी चर्चा का विषय है, साइकिल। जी हाँ, वही साइकिल जिसकी सवारी हमारे दादा और पिता से लेकर हमने और हमारे बच्चों ने भी की है। थोड़ा बहुत गिरते पड़ते आपने और हमने इसे बड़े क्रेज के साथ सीखा था। स्कूल कॉलेज तक का रास्ता तय कराने वाली ये दो पहिया साइकिल विभिन्न डिजाइन्स और रंगों में आती रही है। बहनों, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में महत्वपूर्ण साधन की भूमिका निभाने वाली दो पहिया साइकिल हमारे पर्यावरण के लिए भी सबसे सुरक्षित वाहन है। साइकिल की बहुउपयोगिता इस बात से सिद्ध होती है कि परिवहन, मनोरंजन, व्यायाम और खेल के लिए इसका उपयोग होता आया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि साइकिल चलाने से जीवाश्म ईंधन की खपत कम होती है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कम होता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होता है। छोटी दूरी तय करने का परफेक्ट साधन साइकिल है। बहनों, हम चाहे कितनी ही वैज्ञानिक उन्नति क्यों ना कर लें, किंतु प्रारंभ से हमारे जीवन का जो चीज़ें हिस्सा रही हैं, वो बेसिक चीज़ें जिन्हें पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया था, आज भी वो चीज़ें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। साइकिल दो पहियों पर चलने वाली एक मशीन नहीं, बल्कि हमारे जीवन संतुलन का प्रतीक भी है। बहनों, दो पहियों की इस संस्कृति का आविष्कार सन 1817 में जर्मनी के रहने वाले कार्ल वॉन ड्रेस द्वारा किया गया। हॉबी हॉर्स यानी काठ का घोड़ा के नाम से भी इसे जाना जाता था। इसमें पैडल या चेन नहीं थे, इसे पैर से धक्का मारकर चलाया जाता था। फिर 1839 में आधुनिक पैडल वाली साइकिल तैयार करने का श्रेय किर्क पैट्रिक मैकमिलन और सन 1885 में पैडल बीच में लगाकर चेन के माध्यम से पिछले पहिए को घुमाने की तकनीक के साथ सुरक्षित साइकिल बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जॉन कैंप स्टर्ली को जाता है। बहनों, भारत में साइकिल की शुरुआत व्यावसायिक उत्पादन के तौर पर सन 1942 में मुंबई की हिंद साइकिल कंपनी द्वारा हुई। बहनों, साइकिल चलाने के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य लाभों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अप्रैल सन 2018 में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके माध्यम से 3 जून को आधिकारिक तौर पर विश्व साइकिल दिवस घोषित किया गया था। बहनों, आज का यह दिन साइकिल के 2 शताब्दियों से अधिक के इतिहास, इसकी विश्वसनीयता, सादगी और पर्यावरण मित्र होने का सम्मान करता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं द्वारा साइकिल रैलियां, मैराथन और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। चलिए बहनों, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहनों, जीवन की यात्रा को सुखद तरीके से करने के लिए ज़रूरत होती है रिश्तों में संतुलन और सामंजस्य की, अपने दृष्टिकोण को बदलने की। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, उसका जीवन आसान हो जाता है। तो आइए बहनों, सुनते हैं जीवन के ऐसे ही दृश्य का चित्रण करती एक कहानी, सिक्के का दूसरा पहलू। कहानीकार हैं अर्चना सिंघल।
1: तरफ खुशियों का माहौल था। शहनाई की गूंज सुनाई दे रही थी। सभी खुश थे क्योंकि गांव के सभी घरों में चून का बुलावा लगा था। और ये शादी अपने आप में एक पहेली भी थी, क्योंकि शहर का एक पढ़ा लिखा बांका जवान और सरकारी पद पर कार्यरत लड़का गांव की एक सीधी सादी अनपढ़ गंवार और बिन माँ बाप की लड़की से ब्याजू कर रहा था। पर यह सब तो अपने अपने नसीब की बात है। आखिर ओमवती का विवाह रामनारायण से हो गया और वे विदा होकर अपने ससुराल आ गई। घर में खुशियों का माहौल था। ससुराल में सभी ने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया। कुछ दिन तक सब ठीक चला। कुछ दिन के बाद से रामनारायण ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब वे शराब पीने लगा, रात रात भर घर से बाहर बिताने लगा। विरोध करने पर वे घर में सबसे लड़ने झगड़ने लगा। ओमवती बेचारी बनकर रह गई। रोज रोज के कलेशों से

तंग आकर घर वालों ने उन दोनों को घर से अलग कर दिया। अब तो जैसे राम नारायण को खुला आसमान मिल गया। धीरे धीरे ओमवती ने चार बच्चों को जन्म दिया। उनके दो बेटे थे व दो बेटियां। बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगे, राम नारायण की विलासिता और बढ़ती गई। बेचारी ओमवती क्या करती, शादी तो पहले ही उसके रिश्तेदारों ने की थी, तो शादी के बाद मायका तो छूट ही गया था। ऊपर से अनपढ़, पति भी सारी कमाई उड़ा देता। जो थोड़ा बहुत बचा खुचा होता उसी से अपना घर चलाती व बच्चों को पालती। पति का विरोध करने पर वह उसे मारता व घर से निकाल देता। ये सब बच्चे रोज देखते। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी, किसी बात से रामनारायण को कोई मतलब नहीं था। खुद की सरकारी नौकरी होते हुए भी उसने कभी कोशिश नहीं की कि उनका कोई भी बच्चा पढ़ लिख कर कोई अच्छा पद प्राप्त करे। उल्टा उन्हें छोटी छोटी सी उम्र में ही नौकरियों पर लगना पड़ा, क्योंकि रामनारायण तो अपनी सारी तनख्वाह अपनी अय्याशियों में ही उड़ा देते थे। धीरे धीरे उनकी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गईं, तो बिना किसी जांच पड़ताल के अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी और ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि जिन घरों में मैं अपनी बेटियां दे रहा हूं वहां वो सुखी भी रहेंगे या नहीं। मानो वह बेटियां ना होकर कोई बोझ हो और राम नारायण ने उतार कर फेंक दिया हो। बेटियां तो अपने ससुराल जाकर पहले ही अपने पिता को भुला चुकी थीं। बेटों के भी मन में अपने बाप के लिए घृणा और नफरत के सिवा कुछ नहीं बचा, क्योंकि वे दोनों उन्हीं की वजह से बर्बाद थे और जैसे तैसे अपनी गृहस्थियों की गाड़ी खींच रहे थे। रामनारायण और ओमवती अब बूढ़े हो रहे थे। उनकी पेंशन आती थी। रामनारायण को लगता था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे पास पैसा है, जिसे दूंगा उसी से अपना सारा काम करवा लूंगा। वे अब भी अपने बारे में ही सोचते, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे किस परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं था। यही वजह थी कि उनके दोनों बेटे उनसे नाराज रहते थे। रामनारायण की दोनों बहुएं ये सब देखकर दुखी होती कि आखिर ये दोनों भाई अपने पिता से ढंग से बात क्यों नहीं करते या उन्हें समय क्यों नहीं देते। वे अपने पतियों को बहुत समझाती, पर उनके दिलो दिमाग पर बचपन से जिस नफरत ने घर कर रखा था वे उससे उबर नहीं पाते थे। एक दिन रामनारायण की तबीयत खराब हो गई। वे सारा दिन बिस्तर से ना उठ सके, परंतु उनका दोनों में से एक भी बेटा उनका हालचाल पूछने नहीं आया। तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरे बीमार होने पर भी बच्चों ने मेरे बारे में नहीं पूछा। ओमवती को भी यह सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे अपने भाग्य के साथ पहले ही समझौता कर चुकी थी। वह तो बस यही जानती थी कि पति कैसा भी हो पर वह परमेश्वर है, और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उसने अपने मायके में भी यही देखा था, परंतु उसके दोनों बेटे यह समझना नहीं चाहते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ रामनारायण के साथ उठने बैठने वाले, संग में नशा करने वाले दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब ले देकर उनके पास वही अपनी पत्नी और बच्चे बचे थे। धीरे धीरे रामनारायण के हाथ पर जवाब देने लगे और वे अपने छोटे मोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगे। हालांकि उनके बेटे उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते थे, परंतु अपनी माँ के कहने पर अपने पिता का काम कर देते थे। ये बात कहीं ना कहीं रामनारायण को परेशान जरूर करती कि देखो, सबके बच्चे अपने माँ बाप का कितना ध्यान रखते हैं और एक मेरे बच्चे हैं जिन्हें मेरी कोई भी चिंता नहीं, बस अपनी माँ का ही ख्याल रखते हैं। मेरी तो जैसे उन्हें कोई भी फिक्र नहीं। अब जब भी कोई रिश्तेदार उनके घर आता तो वह एक ही बात करते कि आजकल के बच्चे अपने बारे में मस्त रहते हैं, उन्हें अपने माँ बाप की कोई चिंता नहीं। अब एक दिन ऐसा आया जब ओमवती को एक लाइलाज बीमारी ने घेर लिया। वह बिस्तर से लग गई। काफ़ी इलाज करवाया गया, बहू बेटों ने खूब सेवा की, परंतु वे वापस बिस्तर से ना उठ सकी और स्वर्ग से तार गई। अब रामनारायण बिल्कुल अकेले हो गए, क्योंकि ओमवती ही थी जो उनका थोड़ा बहुत ख्याल रखा करती थी। एक दिन रामनारायण के एक पुराने मित्र बलवीर उनसे मिलने आए और उन्होंने रामनारायण से उनका हालचाल पूछा। पूछते ही जैसे रामनारायण को वजह मिल गई अपने बेटे बहुओं को कोसने की। पहले तो बलवीर ने रामनारायण की सारी बातें सुनी, फिर वो अपने दोस्त को समझाते हुए बोले, देखो रामनारायण, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये समाज हमेशा बड़े बूढ़ों को देखकर ये सोचता है कि ये कितने बेचारे हैं और इनके बच्चे कितने दुष्ट हैं जो इनकी सेवा नहीं करते, लेकिन मेरे दोस्त ये कोई नहीं सोचता कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत

0: तब तुमने उनकी परवाह नहीं की, हमेशा अपने बारे में ही सोचा। इसी प्रकार जब आज तुम्हें उनके सहारे की ज़रूरत है, तब वह तुम्हारे बारे में नहीं सोचते। बहुत से लोग एक तरफ की बात सुनकर फैसला सुना देते हैं, परंतु हमें अपनी गलतियों का मनन भी करना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है कि हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। सुनकर रामनारायण का सिर शर्म से झुक गया। वह समझ चुके थे कि मुझसे जीवन में क्या गलती हुई है। मैंने अपनी जवानी में चंद खुशियों को पाने के लिए अपने जीवन की सारी खुशियां खो दी, पर वह अब पछताने के सिवाय और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने वह खोया था जिसके मिलने की उम्मीद शायद अब ना के बराबर थी, और वो थे उनके अपने।
1: बहनों, अभी आपने सुनी अर्चना सिंघल की कहानी सिक्के का दूसरा पहलू। और बहनों, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के उस पार मिलेंगे आपसे कार्यक्रम के अगले सेगमेंट मेरी माटी मेरा देश में।

कोरे कागज की दुनिया में जो शब्दों का संसार सजाते हैं, कभी कल्पना की उड़ान भरते तो कभी जमी की हकीकत बताते हैं। बहनों, ये पंक्तियां लिखी गई हैं लेखक के जीवन और उनके शब्दों की शक्ति के समर्पण स्वरूप। बहनों, लेखन की दुनिया में उपन्यासकार जिस वक्त प्राय उच्च मध्यम वर्ग तथा शहरी धनी परिवार के पात्रों के इर्द गिर्द अपने कथा सूत्र का निर्माण किया करते थे, उस समय उपेक्षित हाशिए पर स्थित जनजातियों को केंद्र में रखकर काव्य रचना करने वाली और परंपरा से हटकर अपने लिए नए मार्ग की स्थापना करने वाली भारतीय लेखिका थी महाश्वेता देवी। उनका जन्म 14 जनवरी 1926 को ढाका के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता मनीष घटक एक प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार थे। माता धरित्री देवी एक लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। प्रारंभिक शिक्षा ढाका में पूरी करने के बाद उन्होंने शांति निकेतन से अंग्रेजी में बीए और कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। मेहनत और ईमानदारी के दम पर अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए महाश्वेता ने स्वयं को पत्रकार, लेखिका, साहित्यकार के रूप में विकसित किया। महाश्वेता देवी की महत्वपूर्ण कृतियों में झांसी की रानी, मास्टर साहब, स्त्री पर्व, नटी, मातृ छवि, अग्निगर्भ, जंगल के दावेदार, 1084 की माँ जैसी रचनाएं उपलब्ध हैं। महाश्वेता की कृतियों पर कई फिल्मों का निर्माण भी हुआ, जैसे सन 1968 में संघर्ष, 1993 में रुदाली, 1998 में 1084 की माँ। महाश्वेता देवी को 1977 में मैग्सेसे पुरस्कार, 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1996 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्मश्री, सन 2006 में पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया। बहनों, महाश्वेता देवी का निधन शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों के काम न करने और दिल का दौरा पड़ने के कारण 28 जुलाई सन 2016 को कोलकाता में हुआ। महाश्वेता देवी लिखित संघर्ष रचना पर आधारित बनी एक फिल्म का ही एक गीत हम आपको अभी सुनवाते हैं।

0: बहनों, जब हमारी त्वचा सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आती है तो इसे खतरे के रूप में महसूस करती है। बचाव के तौर पर हमारी त्वचा की कोशिकाएं अधिक मात्रा में मेलानिन नामक प्राकृतिक पिगमेंट का उत्पादन करने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा का रंग गहरा या टैन हो जाता है। बहनों, एक ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि सन टैनिंग और सन बर्न में भी अंतर होता है। सन बर्न यानी कि जब धूप बहुत तेज़ होती है, त्वचा यूवी किरणों से बुरी तरह झुलस जाती है और त्वचा लाल पड़ जाती है, सूजन आ जाती है, जलन होती है और पपड़ी उतरने लगती है। वहीं सन टैनिंग में त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, लेकिन इसमें जलन या पपड़ी जैसा कुछ नहीं होता। बहनों, बाहर धूप कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, ज़रूरी कामों से तो हमें निकलना ही पड़ता है। सन टैनिंग से खुद को बचाए रखने के लिए हमें बाहर निकलते समय SPF वाले सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। किसी स्कार्फ या कॉटन के दुपट्टे से अपने बालों और चेहरे को कवर करना चाहिए। हाथों पर लॉन्ग हैंडेड ग्लव्स भी पहन लेने चाहिए और एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करना चाहिए। तीखे तेवर हमारी स्किन की रंगत पर अपना असर ज़रूर डालते हैं। चेहरे के साथ साथ शरीर के खुले हिस्सों पर धूप के कारण सन टैनिंग या फिर सन बर्न जैसी समस्या से हमें दो चार तो होना ही पड़ता है। तो हमने सोचा कि सन टैनिंग से बचाव के तरीकों पर बात की जाए, तो इसीलिए गर्मियों में होने वाली कॉमन स्किन प्रॉब्लम से निपटने की कुछ होम रेमेडीज की जानकारी आज हमें देंगी हमारे साथ मौजूद सजी रजिया, जो कि एक ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और कई वर्षों से अपना ब्यूटी पार्लर भी रन कर रही हैं। जैसा कि गर्मियों का सीजन अब पूरी तरह से अपनी फॉर्म में आ चुका है और सूरज की धूप ने हमारी स्किन को झुलसाना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में लोगों को अक्सर करके जिस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में आप हमें कुछ बताइए, क्योंकि आप तो महिलाओं को आए दिन ब्यूटी ट्रीटमेंट देती हैं।
1: देखिए, आजकल जो महिलाएं हमारे पास सलोन्स में आ रही हैं, डी टैन की प्रॉब्लम्स के ही लिए आ रही हों, चाहे सलोन्स हों चाहे ब्यूटी क्लिनिक हो, सबसे ज्यादा जो आजकल समस्या है वो डी टैन की है। 80% क्या 90% महिलाएं ये डी टैन की समस्या से जूझ रही हैं, क्योंकि आजकल हर कोई है वो वर्किंग में है, जॉब में है, सुबह 10 बजे से निकलता है, पूरी धूप उस पर गुजरती है, पानी की कमी रहती है, इन रीजनों से ये डी टैन का पानी है, धूल है, मिट्टी है, और जो हमारे जिस लाइट में हम ऑफिस के नीचे बैठे हैं उस लाइट से भी हमको इफेक्ट होता है और वो हमको डी टैन क्रिएट करती है
0: जी। सबसे मेन प्रॉब्लम जो स्किन से जुड़ी

0: इन दिनों यानी कि समर सीजन में होती है वो है सन टैनिंग। तो उसके लिए ऐसी कुछ होम रेमेडीज जो कि हमारी बहनें अपने घर पर आसानी से तैयार कर सकें, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए मंगला जी, सबसे पहले हम चलेंगे आलू की तरफ, जो बादशाह
0: जी
1: है हमारे किचन का। बिना
0: जी
1: आलू के तो कुछ भी नहीं होता, तो
0: बिल्कुल
1: अभी भी बिना आलू के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। नंबर एक, हम एक आलू लेते हैं, मीडियम आलू लीजिएगा,
0: जी
1: उसको वॉश कर लें अच्छे से। वॉश करने के बाद उसको मिक्सी में डालेंगे। मिक्सी में डालने के बाद उसमें थोड़ा पानी डालें, इसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद इसको जब अलग करें तो डायरेक्ट एक कॉटन के क्लॉथ में या मलमल के कपड़े में लेंगे, उसको निचोड़ेंगे। निचोड़ने के बाद जो जूस होगा वो अलग कर लेंगे, एक पेस्ट बन जाएगा आलू का, उसको अलग कर लेंगे।
0: जी
1: पहले हम फेस को अपने क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जो हाँ जहाँ हमें डार्क स्किन लग रही है, जैसे कि हमारी डार्क स्किन होती है फॉरहेड पर, चिन पर या फेस पर, तो पहले हम अपने फॉरहेड पर इस जूस को लगाएंगे खूब अच्छे से, फिर हम अपने चिन पे लगाएंगे, बाकी हम बाद में पूरे फेस पे लगाएंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा मंगला जी 2 मिनट लेता है सूखने में। ये
0: जी
1: जब सूख जाता है तो जो हमारा पेस्ट बचता है, उसके जो पेस्ट बचा है आलू का, उस पेस्ट को इसके ऊपर लगाएंगे। जो हमने जूस लगाया है उसके ऊपर हमें रिपीट करना है, लगाना है इसके आलू के पेस्ट को। लगाने के बाद धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में इसकी मसाज करनी है।
0: जी
1: मसाज करके इसे हल्के मिनरल वाटर से इसको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद इसे वेट रखें फेस को। फेस को वेट रखने के बाद हवा में सूखने दीजिएगा। इसे पोंछना नहीं है, ना कोई टिश्यू पेपर टॉवल से, नहीं, इसे खुला छोड़ दीजिएगा, ये हवा
0: जी
1: में ही सूखेगा। लौकी और तोरई बहुत कॉमन है, तो हम तोरई की तरफ चलते हैं।
0: जी
1: जब हम तोरई को छीलते हैं तो जो उसके छिलके निकलते हैं, उन छिलकों में आप देखिए कितने चिपचिपाहट होती है, तो वो सारे
0: जी
1: छिलके आप इकट्ठे कर लीजिएगा। इकट्ठे
0: जी
1: करने के बाद उसे हल्का सा चाहे तो आप निचोड़ लें हथेली से कस के, तब भी उसमें जूस निकलेगा, या
0: जी
1: फिर आप उसको मिक्सी में डालें और ग्राइंड कर लें तो उसमें तब भी जूस निकलेगा। सेम इसे ऐसे ही करना है, इसके जूस को अलग करना है, इसके पेस्ट को अलग करना है।
0: जी
1: पहले हम जूस को लगाएंगे, सर्कुलर मोशन में इसकी मसाज करते चलेंगे। अच्छा, जो हमें मसाज करनी है मंगला
0: जी
1: जी, इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी हम मसाज करेंगे वो फिंगर टिप्स से करनी है, हथेली या फिंगर से नहीं करनी है। जो टिप्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, हमें उस टिप से इसकी मसाज करनी है। फिर
0: जी
1: जैसे एज इट इज मैंने आपको बताया, फिर इसका पेस्ट लेंगे, पेस्ट लेके लगा के छोड़ देंगे। फिर पेस्ट की भी हम तोरे का जो पेस्ट है उसको भी हम मसाज करेंगे,
0: जी
1: फिर उसे 2-3 मिनट बाद इसको हटा देंगे। ये लास्ट और बोनस टिप देती हूँ मैं आपको,
0: जी
1: ये टोटल और टोटल होम बेस्ड डिटेन फेस पैक है। ये
0: जी
1: एलोवेरा बेस्ड है। इस एलोवेरा में आप स्क्रबिंग के साथ करेंगे। अब
0: जी
1: स्क्रब कैसे बनाएंगे, या तो आप मसूर की दाल ले लीजिए,
0: जी
1: बारीक इसको पीस लीजिए, इसका पेस्ट बना लें, या फिर आप चावल भी ले सकते हैं इसके
0: जी
1: ऑल्टरनेट पर। चावल को बारीक पीस लें और एलोवेरा में, एलोवेरा के जेल में इसको
0: जी
1: मिक्स कर लें। खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर इसको रख दीजिए, 5-10 मिनट। जब ये फ्लफी हो जाए, ये वॉल्यूम पकड़ ले एलोवेरा जेल, फिर इसको फेस पे, पूरे फेस पे लगाना है आपको।
0: जी
1: लगाने के बाद थोड़ा सा गुलाब जल लें अपने हाथों पर। लेने के बाद इसकी बहुत हल्के हाथ से इसकी मसाज करें, और
0: जी
1: मसाज करके एलोवेरा जेल की खूब अच्छे से मसाज करके इसको लीव करें छोड़े कुछ देर के बाद। उसके बाद प्लेन वाटर से इसको वॉश कर दीजिए। इस प्रोसेस को केवल आपको 15 दिन में एक बार करना है।
0: जी आपने आज जो भी जानकारी, जो भी सुझाव हमारी बहनों को दिए हैं सन टैनिंग से बचने के, जो उपाय आज आपने हमें बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि इन उपायों को अपनाकर वो अपनी स्किन केयर को बहुत अच्छे से कर पाएंगी, और आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: बहनों अब करते हैं बात पते की। अधिकतर भारतीय घरों के आंगन या बालकनी में तुलसी का पौधा जरूर होता है। इसे अत्यंत पवित्र भी माना जाता है, और कई बार अच्छी देखभाल करने के बाद भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। तो बहनों इसके लिए एक छोटे से घरेलू उपाय की ओर ध्यान दीजिए। जी हाँ बहनों, एक गिलास साफ पानी में 1 चम्मच खट्टा दही या छाछ अच्छे से मिलाकर इसका एक सफ़ेद लिक्विड तैयार कर लें। गमले की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करके इसको इसकी पौधे की जड़ों में डालें। देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका ये तुलसी का पौधा हरा भरा हो जाएगा। बहनों यह अम्लीय खट्टा घोल मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और नई पत्तियां तेजी से उगती हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम घर संसार की सभी श्रोता बहनों को रेडियो मित्र मंगला शर्मा पाराशर का नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और राजन साजन मिश्रा के गाए भजन। तो आइए पहले सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये भजन।

श्रोताओ, आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं राजन साजन मिश्रा की स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIRF पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक रिता ब्रता बैनर्जी

जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली ये खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।

0: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
1: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जिसमें आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का राग भैरवी में ठुमरी गायन। उसके बाद आप सुनेंगे देवाशीष चक्रवर्ती का भटियाली धुन में गिटार वादन। तो आइए पहले सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी का राग भैरवी में ठुमरी गायन।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओ, इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म से आशा भोसले और शमशाद बेगम के स्वर में। एसएस बिहारी के गीत को संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं गुमनाम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। तो आइए आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसे हमने लिया है सिर्फ तुम फिल्म से।

श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं चमत्कार फिल्म का ये गीत कुमार सानू के स्वर में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

श्रोताओ, अभी आपने सुना राज फिल्म का ये गीत। अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में गीत रचना समीर की थी और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। आइए अब सुनते हैं ओम शांति ओम फिल्म का ये गीत। स्वर सोनू निगम और श्रेया घोषाल के हैं। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है सिलसिला फिल्म से। स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के हैं, गीत रचना जावेद अख्तर की है और संगीत दिया है शिव हरि ने।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। हमारी सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के प्रसारण के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। श्रोताओं, सभा की शुरुआत में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया है।
3: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
2: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
4: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
2: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में NH-31 और NH-231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नत करने को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक है। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने

0: बेंगलुरु में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 12 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटना क्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों को प्रशिक्षण देकर 10 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 304 अंकों के गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सबसे पहले जानकारी लीजिए हमारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:30 पर चर्चा का विषय होगा हीट वेव में सेहत का ख्याल। साथ ही आप सुनेंगे भावना सिंह की वार्ता, विषय होगा कूल और लाइफ स्टाइल का अहम हिस्सा बनती साइकिल। आइए जाने क्रम में बात होगी लोक लेखा समिति के बारे में और सादा जीवन उच्च विचार के बारे में आपको बताएंगे क्रम जीने की कला में। साथ ही सुनिएगा कुछ फिल्मी गीत। शाम 6:00 कार्यक्रम ग्राम्यालोक में चर्चा होगी फसल चक्र की उपयोगिता विषय पर। इसके अलावा आप सुनेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी और लोकगीतों के अलावा आस्था शर्मा की वार्ता, विषय होगा उन्नत बीज समृद्ध किसान। मजदूर मंडल कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा विश्व साइकिल दिवस। साथ ही आप सुनेंगे श्रीमती सपना मांगलिक की कहानी गमछे वाला हीरो। साथ ही आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम मजदूर मंडल का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:30। शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आप सुनेंगे विश्व साइकिल दिवस पर केंद्रित वार्ता जीवन संतुलन की पाठशाला है साइकिल। वार्ताकार होंगे दाऊजी अग्रवाल। मेरी माटी मेरा देश, ये कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 7:31 पर। 8:00 आनंद लीजिएगा कार्यक्रम एक और अनेक का। चित्रपट संगीत आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10

और अब रूपरेखा सुनिए कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना। चिंतन कार्यक्रम में कल विषय होगा सादगी, इसे आप सुनेंगे 6:25 पर। 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय प्रसारण। खेती की बातें कार्यक्रम में 6:45 पर आप सुनेंगे डॉक्टर यूडी गुप्ता की वार्ता, विषय होगा डेयरी व्यवसाय हेतु पशुओं का चयन। 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा में आप सुनेंगे डॉक्टर बीबी कुशवाहा की वार्ता, बच्चों में निमोनिया रोग के कारण, लक्षण और बचाव। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास का प्रसारण समय रहेगा कल प्रातः 7:31। 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि में सदाबहार फिल्मी गीत। गीत मंजूषा कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे पुरानी फिल्मों से तराने 9:25 पर। 9:45 पर कार्यक्रम लोक संगीत में कलाकार होंगे भारत सिंह। 10:00 आनंद लीजिएगा सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुर सरिता के अंतर्गत। 11:00 आज के कलाकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री नूतन पर। 11:30 पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत केंद्रित होगा आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विषय होगा बच्चों से उनका बचपन मत छीनिए। 12:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम नए तराने। दिन में 1:45 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई कुछ गजलें। 2:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और गीत गुंजन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा दिन में 3:00। कल शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संध्या। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संध्या।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अभी आप सुन रहे थे वारदात फिल्म का भजन, बप्पी लहरी, आशा भोसले और साथियों के स्वर में। इस भजन को लिखा था रमेश पंत ने, धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने। अब आइए सुनते हैं चंदा और बिजली फिल्म का भक्ति गीत, मन्ना डे की आवाज में। नीरज की शब्द रचना को संगीत दिया है शंकर जय किशन ने।

अभी आप सुन रहे थे चंदा और बिजली फिल्म का भजन मन्ना डे की आवाज में। नीरज की रचना को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं गंगा तेरा पानी अमृत फिल्म का भक्ति गीत मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में। संगीतकार हैं रवि।

इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, खुश और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वैसे आज मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह घर से बिल्कुल ठीक ठाक निकले हों, लेकिन दोपहर होते होते अचानक सिर भारी लगने लगे, शरीर में कमजोरी महसूस हो, बार बार प्यास लगे, या फिर बिना ज़्यादा काम किए भी थकान महसूस होने लगे? शायद आप में से कई लोगों का जवाब होगा, हाँ ऐसा तो अक्सर हो जाता है। और अगर मैं कहूँ कि इसके पीछे सिर्फ आपकी दिन भर की भागदौड़ नहीं, बल्कि मौसम भी एक बड़ी वजह हो सकता है, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है। सुबह के कुछ घंटे छोड़ दें तो ऐसा लगता है कि सूरज आग बरसा रहा हो। घर से बाहर निकलते ही तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता हुआ तापमान हमारे शरीर को प्रभावित करने लगता है। बच्चे हों, युवा हो या बुजुर्ग, इस मौसम का असर सभी पर पड़ रहा है। यही कारण है कि आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे ही विषय पर जो इन दिनों हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हीट वेव। अब दोस्तों, हीट वेव है तो आपके फोन तो लगातार बज रहे होंगे, रोजाना दिन में 3-4 बार बज रहे होंगे, तो वो संकेत है कि हीट वेव के समय सेहत का ख्याल रखना है, खुद का ख्याल रखना है। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी शर्मा और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का युवा स्पेशल कार्यक्रम युववाणी, जहां हम बात करते हैं आपसे जुड़ी, समाज से जुड़ी और जीवन

0: जीवन को बेहतर बनाने वाली बातों की। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हीट वेव है क्या। अगर साधारण भाषा में कहें तो जब किसी क्षेत्र में लगातार कई दिनों तक या किसी स्पेसिफिक समय पर तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाए और गर्म हवाएं चलने लगें, तब उस स्थिति को हीट वेव या लू कहा जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ गर्मी महसूस होने का मामला नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि एक गंभीर मौसमी स्थिति है जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। दरअसल दोस्तों, हमारा शरीर एक निश्चित तापमान पर सबसे बेहतर तरीके से काम करता है, लेकिन जब बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शरीर को खुद को ठंडा रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, और इस प्रक्रिया में शरीर से पसीना निकलता है और पानी की कमी होने लगती है। अगर सही समय पर पानी और ज़रूरी तरल पदार्थ ना मिलें तो डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके अलावा चक्कर आना, सिर दर्द, अत्यधिक थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, उल्टी या बेहोशी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं दोस्तों, और गंभीर स्थिति में हीट स्ट्रोक का खतरा भी पैदा हो सकता है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या, कि थोड़ी सी सावधानी अपनाकर हम खुद को और अपने परिवार को इस समय से काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि हीट वेव अभी इसी समय चालू हुई हो, बस ये है कि सरकार ने हम सबको जागरूक करने के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। साथ ही साथ जिस तरीके से मौसम दिन में 3-4 बार बदलता है, उसकी जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक है, जिससे हम खुद का ख्याल रख सकें। तो सबसे पहले क्या करना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। प्यास लगे या ना लगे, नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें। इसके साथ ही नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी या अन्य तरल पदार्थ भी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोपहर के समय, खासकर 12 बजे से 4 बजे के बीच, अनावश्यक रूप से धूप में निकलने से बचें। यदि बाहर जाना ज़रूरी है तो सिर को कपड़े, टोपी या छाती से ढककर निकलें। हल्के रंग और सूती कपड़े पहनना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि दोस्तों ये शरीर को अपेक्षाकृत ठंडा रखने में मदद करते हैं। खान पान की बात करें तो मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखते हैं, इसलिए वही बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, तला भुना खाना बिल्कुल बचें खाने से। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम युवा अपनी पढ़ाई, नौकरी, खेलकूद और अन्य कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, अच्छी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। अब दोस्तों, हीट वेव से बचाव की बात तो हमने कर ली, लेकिन जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ना चाहूँगी। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी क्षेत्र में हीट वेव या लू चल रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किस तापमान या किन परिस्थितियों के आधार पर मौसम विभाग किसी स्थिति को हीट वेव घोषित करता है? तो बस इसी सवाल का जवाब ढूंढिए। हम आते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
4: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
3: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
4: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
5: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हीट वेव और उससे बचाव के उपायों के बारे में। बढ़ती गर्मी और बदलती जीवन शैली के बीच आज सबसे ज़रूरी बात है ऐसे विकल्प अपनाने की जो ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हो, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम बदल रहा है आगे का तो कुछ कह नहीं सकते। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो पाएंगे कि छोटी छोटी दूरियों के लिए भी हम अक्सर मोटर वाहनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इससे जहां एक और शारीरिक गतिविधियां कम हो रही हैं, वहीं प्रदूषण और ईंधन की खपत

0: भी बढ़ रही है। ऐसे में एक साधारण सा साधन आज फिर से लोगों के बीच लोकप्रिय होता दिखाई दे रहा है। एक ऐसा साथी जो हमारी सेहत का भी ख्याल रखता है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है, साथ ही साथ हमारी जीवन शैली को भी एक नया अंदाज देता है। दोस्तों, आज 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर आज हमारे साथ हैं भावना सिंह, जिनसे हम जानेंगे कूल लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बनती साइकिल के बारे में। तो आइए जानते हैं कि कैसे साइकिल आज सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं, बल्कि फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है।
1: मित्रों, आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ साइकिल की, तो आपके मन में बचपन की साइकिल अवश्य आ रही होगी। एक समय था जब साइकिल केवल साधन मात्र नहीं थी, बल्कि साइकिल के स्वामित्व को व्यक्ति की पहचान माना जाता था और उसका उपयोग प्राय गांव की पगडंडियों तक सीमित रहता था। किंतु आज समय बदल चुका है। आज साइकिल केवल एक साधन नहीं रह गई है, बल्कि आधुनिक जीवन शैली, स्वास्थ्य, चेतना और युवा पीढ़ी की नई पहचान बनकर उभरी है। आज की युवा पीढ़ी के लिए अब यह कूलनेस और उनके लाइफस्टाइल का प्रतीक बन रही है। यदि आप किसी बड़े शहर की सड़कों पर नजर डालें, तो आपकी महंगी कारों से अधिक लोग साइकिल चलाते दिखाई देंगे। कोई इसे स्वास्थ्य के लिए अपनाता है, तो कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए, और कोई अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए। मित्रों, भारत में साइकिल केवल एक वाहन नहीं, बल्कि भावनाओं का हिस्सा भी रही है। एक समय था जब साइकिल पूरे परिवार की पहचान हुआ करती थी। बच्चे उसी पर बैठकर विद्यालय जाते थे, किसान उसी पर अपने खेतों तक पहुंचता था और अनेक प्रेम कहानियों में भी साइकिल की अपनी एक विशेष भूमिका होती थी। गांव की गलियों में चलती साइकिल केवल धातु नहीं थी, वह संघर्ष, मेहनत और सपनों का पहिया थी। पर फिर धीरे धीरे मोटरसाइकिलों और कारों का युग आया और लोग साइकिल से दूर होते चले गए। परंतु आज वही साइकिल आधुनिकता और आकर्षण का प्रतीक बनकर पुनः लौट रही है। दोस्तों, देखा जाए तो यह परिवर्तन अपने आप में अत्यंत रोचक है। कभी लोग साइकिल चलाने के लिए समय निकालते थे, क्योंकि वह एक आवश्यकता थी। आज लोग साइकिल चलाने के लिए समय निकालते हैं, क्योंकि वह एक विकल्प और शौक बन चुकी है। कोई फिटनेस के उद्देश्य से साइकिल चलाता है, तो कोई सप्ताहांत में साइकिल यात्राएं करता है और अपने अनुभव साझा करता है। आज की युवा पीढ़ी यह समझने लगी है कि वास्तविक समृद्धि केवल धन संपत्ति से नहीं आती, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य से आती है। और यही कारण है कि युवा वर्ग साइकिल चलाने को अपनाने लगा है। पहले साइकिल को नीचा दर्जा दिया जाता होगा, पर अब साइकिल चलाना एक उत्कृष्ट व्यायाम है, जो हृदय को स्वस्थ बनाता है, मोटापा कम करता है तथा शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। दोस्तों, साइकिल चलाने के लाभ केवल स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। यदि हम पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों तथा पर्यावरणीय समस्याओं को देखें, तो साइकिल का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज जब प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं मानवता के सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं, तब साइकिल का एक सरल किंतु प्रभावी समाधान के रूप में उभर रही है। एक विद्यार्थी, मजदूर, कर्मचारी या छोटा व्यापारी, हर किसी के लिए साइकिल एक उपयोगी साथी है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी समय समय पर स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस के महत्व पर बल दिया है। फिट इंडिया जैसे अभियानों ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया है। यदि संभव हो तो छोटी दूरियों के लिए हमें भी साइकिल का उपयोग करना चाहिए। कोरोना के बाद दुनिया ने महसूस किया कि सरल जीवन ही सबसे सुंदर और बेहतर जीवन है। उस समय लोग सार्वजनिक वाहनों से बचने लगे, तब लाखों लोगों ने फिर से साइकिल अपनाई। क्या आपको पता है कि नीदरलैंड जैसे देशों में अनेक लोग दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं? और वजह ये नहीं है कि वहाँ लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं है, बल्कि वहाँ साइकिल केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि नागरिक संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये कारण है कि उन देशों में स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का स्तर भी उच्च कोटि का है। और आपने देखा होगा कि आज सोशल मीडिया पर भी साइकिल एक चलन के रूप में उभर रही है। लोग साइकिल यात्राओं की वीडियो बनाते हैं, जिन्हें व्लॉग्स कहते हैं, लंबी यात्राएं करते हैं, पहाड़ों पर साइकिलिंग करते हैं और लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। कोई सेव एनवायरमेंट का संदेश देता है, तो कोई बेटियों की शिक्षा के लिए जागरूकता फैलाता है। यह सादगी और श्रम का प्रतीक है और महात्मा गांधी सादगी में विश्वास रखते थे। यदि आज वह होते तो

0: साइकिल को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत प्रतीक मानते। दोस्तों, आज की पीढ़ी के लिए साइकिल केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि रोमांच, आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी है। महंगी गियर वाली साइकिलें, हेलमेट, स्पोर्ट्स वेयर और फिटनेस उपकरण इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि साइकिल केवल दिखावे का साधन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, समाज और पर्यावरण के लिए एक उपयोगी विकल्प साबित हो रहा है। भारत जैसे देशों में साइकिल का महत्व और भी अधिक है। यह गरीब और अमीर के बीच की दूरी कम करता है, यह गांव और शहर को जोड़ता है। इससे साबित होता है कि साइकिल केवल व्यक्तित्व उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बन सकती है। मित्रों, आज पूरी दुनिया प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। बढ़ती आबादी, वाहनों की संख्या और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग ने अनेक चुनौतियां पैदा कर दी हैं, जो आज हमारे जीवन में बाधा बन रही हैं। ऐसे समय में साइकिल आशा की एक नई किरण बनकर सामने आई है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देश साइकिल संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत में भी इसका प्रभाव तेजी से दिखाई दे रहा है। यह परिवर्तन हमें सिखाता है कि पुरानी चीजें हमेशा पुरानी नहीं होती, बल्कि समय के साथ उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। अंत में मैं महान लेखक एच.जी. वेल्स के शब्दों को याद करते हुए आपके साथ भी साझा करना चाहूंगी, जो कहते हैं कि जब भी मैं किसी वयस्क व्यक्ति को साइकिल चलाते देखता हूँ, तब मानव जाति के भविष्य के प्रति मेरी आशा और मजबूत हो जाती है। तो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर उनकी आशा को बल देते हुए यह संकल्प लें कि जहाँ संभव हो साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और एक स्वस्थ, स्वच्छ तथा सतत भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।
1: दोस्तों, भावना सिंह ने बताया कि किस प्रकार साइकिल आज केवल एक साधारण परिवहन का साधन नहीं रह गई, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुकी है। वास्तव में दोस्तों, जब हम साइकिल चलाने जैसी छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान देता है। क्योंकि दोस्तों, एक जागरूक नागरिक ही एक मजबूत समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव रखता है। दोस्तों, किसी भी देश की प्रगति केवल नई योजनाएं बनाने से तो नहीं होती, बल्कि ये भी उतना ही जरूरी है कि उन योजनाओं और संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। जनता के हित के लिए जो धन खर्च किया जाता है, उसका सही हिसाब किताब रखा जा रहा है या नहीं, ये सुनिश्चित करना भी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और यही कारण है कि हमारा ये लोकतांत्रिक ढांचे में कुछ ऐसी संस्थाएं और समितियां बनाई गई हैं, जो ये देखती हैं कि जनता के पैसों का उपयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हो रहा है या नहीं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं एक ऐसी ही महत्वपूर्ण संसदीय समिति के बारे में, जो सरकारी खर्चों की जाँच पड़ताल और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दोस्तों, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो अक्सर चुनाव, संसद और सरकार की चर्चा करते हैं, लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान केवल अच्छी नीतियां बनाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि उन नीतियों को सही तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं, और जनता के लिए निर्धारित संसाधनों का उपयोग पारदर्शिता के साथ हो रहा है या नहीं। यहीं पर लोक लेखा समिति जैसी संस्थाओं का महत्व सामने आता है। अगर सरल शब्दों में कहूं दोस्तों, तो जवाबदेही और पारदर्शिता का भावना को मजबूत करने का काम करती है। ये सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि सार्वजनिक धन का उपयोग जनता के हित में हो और शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी बने। आज के युवाओं के लिए ये विषय पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि आने वाले समय में देश की प्रशासनिक, वित्तीय और नीतिगत व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे ही हाथों में होगी। यदि युवा ये समझेंगे कि सरकारी संस्थाएं किस प्रकार काम करती हैं और जवाबदेही क्यों जरूरी है, तो वे अधिक जागरूक नागरिक बन पाएंगे। और जहां तक हमारे रोजगार के अवसरों की बात है, तो लेख लेखा समिति में भर्ती नहीं होती, लेकिन इसके कार्यों से जुड़े क्षेत्रों जैसे लेखा, ऑडिट, वित्त, लोक प्रशासन, कानून, सिविल सेवाओं में युवाओं के लिए अनेक संभावनाएं मौजूद हैं। तो आज कई युवा सरकारी लेखा सेवाओं, ऑडिट संस्थानों, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक सेवाओं में अपना करियर बना रहे हैं। इसलिए ये विषय केवल एक संसदीय समिति तक सीमित नहीं, बल्कि ये हमें सुशासन

पारदर्शिता और जिम्मेदार नागरिकता का महत्व भी समझाता है। अब दोस्तों, ये तो बात रही ज़रूरत की, लेकिन जीवन में मनोरंजन भी तो ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं इस प्यारे से गाने की तरफ

दोस्तों, अभी आपने सुना मन को सुकून देने वाला मधुर संगीत। दोस्तों, संगीत की एक खूबी यह है कि वह हमें यह एहसास कराता है कि सुंदरता हमेशा शोर और दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी में भी हो सकता है। कुछ सुर, कुछ शब्द और एक सच्ची भावना, बस इतना ही काफ़ी होता है दिल को छू लेने के लिए। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन पर भी नज़र डालें तो पाएंगे कि आज की दुनिया में हम अक्सर अधिक से अधिक पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। बेहतर फ़ोन, बेहतर गाड़ी, बेहतर सुविधाएं, और इन सब की चाहत स्वाभाविक है। लेकिन कभी कभी इस दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि जीवन की असली खुशी और सफलता केवल बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि हमारे विचारों और व्यवहार से भी तय होती है। और यही सोच हमें एक बहुत ही सुंदर जीवन मंत्र की ओर ले जाती है, सादा जीवन, उच्च विचार। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें आधुनिकता या प्रगति से दूर रहना चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ है कि हमारा जीवन भले ही सरल हो, लेकिन हमारे विचार बड़े, सकारात्मक और समाज के हित में होने चाहिए। व्यक्ति की महानता उसके कपड़ों, धन या दिखावे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, सोच और कर्मों से पहचानी जाती है। दोस्तों, आज के युवाओं के लिए ये विचार और भी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया के दौर में अक्सर हम दूसरों के जीवन शैली से अपनी तुलना करने लगते हैं, लेकिन सच्ची सफलता दूसरों जैसा दिखने में नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब हम सादगी, ईमानदारी और मेहनत और अच्छे विचारों को अपनाते हैं, तो ना केवल हमारा जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आखिरकार उच्च विचार ही व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, सादगी को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाइए और अपने विचारों को इतना ऊंचा रखिए कि वह आपके साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ाने का माध्यम बन सके। अब कार्यक्रम की सादगी को बनाए रखते हुए एक और प्यारा सा गीत आपके लिए।

दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कार्यक्रम के अंतिम चरण में और अब हम जानेंगे आज के सवाल का उत्तर। तो दोस्तों, सवाल था कि आखिर किस आधार पर मौसम विभाग किसी स्थिति को हीट वेव घोषित करता है। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच जाता है और सामान्य तापमान की तुलना में काफ़ी बढ़ जाता है, तब हीट वेव की स्थिति मानी जाती है। दोस्तों, आज के सभी विषय हमें एक ही संदेश देते हैं, चाहे स्वास्थ्य हो की बात हो, पर्यावरण की, जिम्मेदार नागरिक की या जीवन मूल्यों की, जागरूकता और संतुलन ही बेहतर जीवन की कुंजी है। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

श्रोताओं, आज के ग्रामीलोक कार्यक्रम में मैं यशपाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको हमारी राम राम। किसान साथियों, अधिक मास चल रहा है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि कभी भीषण गर्मी तो कभी आंधी तूफान और बरसात हो रही है। इस बेमौसम बरसात ने खाली पड़े खेतों को तो फायदा पहुंचाया है, पर जिन खेतों में जायद की फसल है और गर्मी वाला बाजरा खड़ा हुआ है उनमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी हाँ किसान साथी भाई, खरबूजा, तरबूजा, करेला और ककड़ी की फसल इस आंधी तूफान ने नष्ट कर दी है। वहीं गर्मी वाले बाजरे की फसल में इस बरसात और आंधी तूफान से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। श्रोताओं, खेती किसानी पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है। पर्यावरण में किसी भी प्रकार का बदलाव हमारी कृषि को प्रभावित करता है, इसीलिए कृषि की बेहतरी और विषम परिस्थितियों में भी खेतों से अच्छे उत्पादन के लिए हमें सदैव प्रयास करते रहने चाहिए। कृषि में ऐसी ही एक लाभकारी पद्धति है फसल चक्र की, जिसे हमें अपनाना चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, फसल चक्र की उपयोगिता भी हमें जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है और इससे हमारे खेतों को क्या फायदा होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। किसी खेत में एक निश्चित समय के बाद अलग अलग फसलें अदल बदल कर बोने की विधि को हम फसल चक्र कहते हैं। इससे खेत की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बरकरार रहती है, कीटों और बीमारियों का चक्र टूटता है और उत्पादन लागत कम होकर किसानों को लाभ मिलता है। एक ही फसल को साल दर साल एक ही खेत में बोने से किसान में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इससे फसल की पैदावार और खेत की मिट्टी की सेहत दोनों में गिरावट आती है। किसान साथियों, कीट भी विशेष प्रकार की फसल के आदि हो जाते हैं, जिससे फसल को ज़्यादा नुकसान होता है। फसल चक्र में एक ही खेत में निश्चित समयावधि में अलग अलग फसल एक विशेष क्रम में बोई जाती हैं। इससे उन पोषक तत्वों की भरपाई हो जाती है जो कुछ फसलों की वजह से कम हो जाते हैं। हर फसल की पोषक संबंधी जरूरतें अलग अलग होती हैं, इससे किसी एक तत्व की कमी नहीं होती। जैसे कि दो फसलों के बीच दलहनी फसलें हम उगा दें तो भाई मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे अगली फसल में खाद का

खर्चा बहुत कम आता है। भाई लगातार एक ही फसल उगाने से विशेष कीट और बीमारियां पनप जाती हैं, फसलें बदलने से उनका प्राकृतिक चक्र टूट जाता है, इससे रासायनिक कीटनाशकों का खर्चा भी कम होता है। किसान साथियों, फसल चक्र में कुछ फसलों को दूसरों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है और कुछ को कम पानी की जरूरत होती है। तो पानी अधिक आवश्यकता वाली फसल के बाद पानी की कम जरूरत वाली फसल को बारी बारी से उगाकर बेहतर जल प्रबंधन कर हम सिंचाई का खर्चा भी कम कर सकते हैं। अलग अलग जड़ों की बनावटों वाली फसलें उगाने से मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और खेत की ऊपरी परत का कटाव रुकता है। फसल चक्र में खरपतवार नियंत्रण एक बेहतर उपाय है। इसका नियंत्रण बहुत अच्छे से किया जा सकता है। भिन्न भिन्न फसलों के कटाई का समय अलग अलग होता है, जिससे किसी एक विशेष खरपतवार को पनपने का मौका ही नहीं मिल पाता। और कुछ फसलों खरपतवारों को दबाने में दूसरे की तुलना में अधिक प्रभावी हो जाती हैं, इससे रासायनिक खरपतवार नाशी का प्रयोग कम होता है। किसान साथियों, फसल चक्र में फसलों को बारी बारी से उगाने पर खेत की पैदावार में विविधता आती है और फसल खराब होने का खतरा कम हो जाता है। इससे हम किसानों को मौसम, कीटों और बाजार मूल्यों में होने वाले बदलाव से सहायता मिलती है। किसान साथियों, फसल चक्र में रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग कम हो जाता है, इससे खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और लागत भी कम आती है। साथियों, फसल चक्र ऐसी ही दो फसलों का उदाहरण आज हम आपको देते हैं जिन्हें हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें सोयाबीन की फसल और उसके बाद हम मक्का की फसल बो सकते हैं। यानी मक्का और सोयाबीन की फसलों को बारी बारी से बोने पर पोषक तत्वों की आवश्यकता एवं कीट और रोगों का खतरा अलग अलग होता है। किसान साथियों, हालांकि फसल चक्र एक जटिल प्रक्रिया है और जो एक खेत के लिए कारगर साबित होती है, वहीं दूसरे खेत के लिए उतनी कारगर नहीं हो पाती है। फसल चक्र की योजना बनाते समय मिट्टी का प्रकार, जलवायु और कीटों जैसे कारकों पर विचार करना बहुत जरूरी है। और यह करने के लिए कि फसल चक्र योजना के अनुसार काम कर रही है कि नहीं, इसके लिए अपने खेतों की बारीकी से निगरानी करना भी बहुत जरूरी है। किसान साथियों, फसल चक्र के उपयोग को समझें, उससे मिलने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए और अपने खेत और फसलों का सही चयन करें तो हम इससे बहुत लाभ ले सकते हैं। फसल चक्र का बेहतर प्रयोग करके लाभ लें और समृद्ध बने। साथियों, और बेहतरीन फसल उत्पादन के लिए आइए अब हम बात करते हैं अनाज, सब्जियों और फलों की नई किस्मों के बारे में। जी हाँ साथियों, किसान साथियों, नई और उन्नत किस्में हमें अधिक पैदावार तो देती हैं, साथ में अनेक रोगों से हमारी फसलों को बचाने में सहायक सिद्ध होती हैं। किसान साथियों, ये नई और उन्नत किस्में अनाज, फल और सब्जी की वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की जाती हैं, जिससे कि हमें अपनी खेती किसानी में बहुत लाभ मिलता है। अनाज, सब्जी और फलों की नई किस्मों के बारे में आज हम आपसे बात करते हैं। भारत में विशेष रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और अन्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा फलों, अनाज और सब्जियों की कई उन्नत और नई किस्में विकसित की गई हैं। इन नई किस्मों का उद्देश्य पैदावार बढ़ाना, बीमारियों से बचाव रखना और सूखा सहन करना है और पोषण को बेहतर बनाना है। इन नई किस्मों में अनाज की किस्में हैं जैसे कि गेहूं की। ऐसी किस्म विकसित की गई हैं जो देर से बोने पर या उच्च तापमान में भी अच्छा उत्पादन देती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने 2025 में धान की सूखे के प्रति सहनशील किस्म CO59 और पतले दाने वाली ADT56 और ADT60 किस्में जारी की हैं, जो किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। ठीक ऐसे ही पूसा कंपोजिट 701 बाजरे की एक ऐसी किस्म है जो रोग प्रतिरोधी है और अधिक उपज देती है। अनाज के अलावा सब्जियों में नई किस्में हैं मटर में काशी उदय और काशी नंदनी, लौकी की कोंकण श्वेत

0: और कोंकण तारा ऐसी किस्में हैं जो अच्छी उपज देती हैं। फूल गोभी के लिए CFL 1522 नाम की किस्म है, जो मार्च से अप्रैल के बीच में बहुत अच्छी उगाई जाती है और गर्मी को अधिक सहन कर सकती हैं। किसान साथियों, फलों के लिए जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय ने आम, नारियल, चीकू और अनार की नई किस्में विकसित की हैं, जो विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं। साथियों, नई किस्मों से पुरानी किस्मों की तुलना में बेहतर उत्पादन मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, अनाज, सब्जी और फलों की नई किस्मों में बेहतर गुणवत्ता के साथ साथ जलवायु लचीलापन होता है, यानी सूखा और गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। तो किसान भाइयों, कृषि में अनाज, सब्जियों और फलों की नई और उन्नत किस्मों का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ लें। किसान साथियों, आपके साथ हम अपने कार्यक्रम को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक छोटा सा विराम ले लेते हैं और मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: श्रोताओं, आज यानी 3 जून को हम विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, साइकिल चलाना हम अपनी जिंदगी में कब सीखते हैं, या ये कहें कि साइकिल चलाने को हम अपनी जिंदगी का सबसे पहला साहसिक काम कह सकते हैं, क्योंकि हम सब ने अपने बचपन में सबसे पहले बड़ी खुशी साइकिल चलाकर सीखने में महसूस की है। जी हाँ साथियों, क्योंकि जिंदगी के शुरुआती समय में हम सब गिरते पड़ते साइकिल चलाना सीखते हैं। उम्र के अनुसार साइकिल का भी अपना अलग महत्व बढ़ जाता है। बचपन में शौकिया तौर पर साइकिल चलाते हैं, फिर भाई धीरे धीरे साइकिल का उपयोग हम स्कूल जाने के लिए करते हैं, वहीं बहुत सारे लोग तो अपने काम पर भी साइकिल से जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साइकिल की उपयोगिता भी बदल गई है और महत्व भी बदल गया है। जी हाँ साथियों, एक वक्त था जब साइकिल को परिवार में साधन का हिस्सा माना जाता था, या ये कहें कि पूरे परिवार में साइकिल ही एक ऐसा साधन होता था जिससे कहीं भी आना जाना होता था। लेकिन ज़्यादातर अब सिर्फ कसरत के लिए इस्तेमाल होने वाली यह साइकिल हमारे सबके बीच में साधन का हिस्सा नहीं रही है। श्रोताओं, साइकिल का दौर 1960 से लेकर 1990 तक काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद समय बदलता गया, आज साइकिल कसरत के साथ साथ एथलेटिक्स में भी इस्तेमाल होने लगी है। विश्व साइकिल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा हर साल 3 जून को मनाया जाता है। आज ही के दिन साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया गया था। साथियों, आज के इस महंगाई और प्रदूषण भरे दौर में साइकिल सबसे सस्ता वाहन है। इसके अनेक फायदे हैं भाई, पेट्रोल डीजल की खपत कम होती है, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है और सेहत के लिए तो ये अत्यंत लाभकारी है। तो आज इस साइकिल का हम उपयोग बढ़ाना चाहिए और साइकिल दिवस के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि जितना हो मौका मिले उतना हम साइकिल चलाएं। आज की इस भागम भाग वाली जिंदगी में बचत की दृष्टि से भी साइकिल एक अच्छा साधन है। कहीं भी आने जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करें, ईंधन, पैसा और सेहत का बचाव करें। साथियों, आइए अब हम अपने कार्यक्रम में आपका संगीतमय मनोरंजन करवाते हैं और आनंद लेते हैं इस मधुर लोकगीत।

0: किसान साथियों, फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए हम किसान बहुत मेहनत तो करते ही हैं, साथ में खाद, कीटनाशक और सिंचाई का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें अच्छी फसल के लिए बेहतरीन और उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग भी करना चाहिए, जिससे ज़्यादा और गुणवत्तापूर्ण पैदावार मिले। तो आइए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी वार्ता में आस्था शर्मा आपको उन्नत बीज समृद्ध किसान पर जानकारी दे रही हैं। सुनते हैं यह वार्ता।
1: नमस्कार, आज का विषय है उन्नत बीज समृद्ध किसान। मिट्टी की खुशबू में बसी है किसानों की पहचान, खेतों की हरियाली से सजता है हिंदुस्तान। मेहनत, लगन और उम्मीद का यही है आधार, अच्छे बीज से ही होता है सुनहरे भविष्य का विस्तार। कृषक वर्ग के सभी परिजनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आस्था शर्मा आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे गुणवत्ता युक्त बीजों के महत्व और उनकी पहचान के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, बीज प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। यह पौधे का वह भाग है जिसमें नया पौधा बनने की क्षमता छिपी होती है। किसी भी फसल की सफलता की शुरुआत एक अच्छे बीज से ही होती है। किसानों को बीज का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर और गुणवत्ता युक्त बीज ही अच्छी फसल तथा अधिक उपज का आधार बनता है। यदि अधिक उत्पादन और बेहतर फसल प्राप्त करने का कोई सबसे महत्वपूर्ण साधन है तो वह एक गुणवत्ता युक्त बीज है। इसलिए बीज का चयन हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। किसान भाइयों और बहनों, जब आप किसी विश्वसनीय संस्था, कृषि केंद्र या अधिकृत विक्रेता से बीज खरीदते हैं तो आपको प्रमाणित एवं गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह गुणवत्ता युक्त बीज

तैयार कैसे किया जाता है, आइए इसके बारे में संक्षेप में जानते हैं। किसान भाइयों और बहनों, बीज उत्पादन की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। प्रत्येक चरण के बीज की पहचान के लिए अलग अलग रंग का टैग लगाए जाते हैं। सबसे पहले आता है नाभिकीय बीज। यह किसी किस्म का सबसे शुद्ध और मूल बीज होता है। इसे फसल प्रजनक अर्थात वैज्ञानिक अपने संरक्षण में तैयार करते हैं। नाभिकीय बीज पर सामान्यतः कोई निर्धारित टैग नहीं लगाया जाता। प्रजनक बीज, बीज उत्पादन की अगली कड़ी में नाभिकीय बीज से प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। इसका उत्पादन और देखरेख कृषि वैज्ञानिकों तथा फसल प्रजनकों की निगरानी में की जाती है। इस बीज की पहचान सुनहरे पीले रंग के टैग से होती है। आधार बीज, प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार किया जाता है। इसका उत्पादन बीज निगमों कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। इसकी पहचान सफेद रंग के टैग से होती है। पंजीकृत बीज, कुछ बीज उत्पादन प्रणालियों में आधार बीज से पंजीकृत बीज तैयार किया जाता है। इसकी पहचान बैंगनी रंग के टैग से होती है, हालांकि भारत में इसका उपयोग बहुत सीमित है। प्रमाणित बीज, बीज की प्रजाति विकास की अंतिम अवस्था प्रमाणित बीज है। आधार बीज अथवा पंजीकृत बीज से प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। इसका उत्पादन प्राय पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों, बीज कंपनियों तथा संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यही बीज किसानों को खेती के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसकी पहचान नीले रंग के टैग से होती है। इस प्रकार सुनहरा पीला टैग प्रजनक बीज, सफेद टैग आधार बीज, बैंगनी टैग पंजीकृत बीज तथा नीला टैग प्रमाणित बीज की पहचान कराता है। इसलिए बीज खरीदते समय टैग अवश्य देखें। किसान भाइयों और बहनों, अब प्रश्न यह उठता है कि हमें प्रमाणित बीज अर्थात सर्टिफाइड सीड ही क्यों चुनना चाहिए। प्रमाणित बीज की गुणवत्ता की जांच संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा की जाती है। ऐसे बीजों में आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है, अंकुरण क्षमता अधिक होती है तथा इनमें खरपतवारों, रोगों और अन्य फसलों के बीजों की मिलावट की संभावना भी बहुत कम होती है। प्रमाणित बीजों के उपयोग से पौधों की वृद्धि एक समान होती है, फसल स्वस्थ रहती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। यही कारण है कि कृषि विशेषज्ञ किसानों को हमेशा प्रमाणित बीजों के उपयोग की सलाह देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो प्रमाणित बीज किसान के लिए एक सुरक्षित निवेश की तरह है, जो बेहतर फसल और अधिक उत्पादन की संभावना को बढ़ाता है। याद रखिए, अच्छी फसल की शुरुआत अच्छे बीज से होती है और अच्छे बीज की पहचान उसका प्रमाणित होना है। किसान भाइयों और बहनों, केवल अच्छे बीज का चयन करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि बीज को सही तरीके से संभालना भी उतना ही आवश्यक है। यदि गुणवत्ता युक्त बीज का भंडारण सही ढंग से न किया जाए तो उसकी अंकुरण क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए बीजों को हमेशा सूखी, ठंडी और साफ जगह पर ही संग्रहित करना चाहिए तथा उन्हें नमी और कीटों से बचाकर रखना चाहिए। इसके साथ ही बीज उपचार का भी विशेष महत्व है। बीज बोने से पहले अनुशंसित फफूंदनाशी या जैविक उपचार करने से बीज और पौधों को प्रारंभिक रोगों से सुरक्षा मिलती है। बीज उपचार एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह फसल की अच्छी शुरुआत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीज खरीदते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा प्रमाणित और लेबल युक्त बीज ही खरीदें। पैकेट पर अंकुरण प्रतिशत, शुद्धता प्रतिशत, बैच नंबर और वैधता अवधि अवश्य जांचें। बिना लेबल वाले या अत्यधिक सस्ते बीजों के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि वे अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं हो सकते। आज के समय में अनेक सरकारी संस्थाएं, कृषि विश्वविद्यालय, बीज निगम और अधिकृत बीज विक्रेता किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों को चाहिए कि वे इन्हीं विश्वसनीय स्रोतों से बीज खरीदें, ताकि उन्हें बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त हो सके। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग फसलों और क्षेत्रों के लिए अलग अलग किस्मों की अनुशंसा की जाती है। इसलिए बीज खरीदने से पहले कृषि विशेषज्ञों या कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लेना लाभदायक रहता है। सही क्षेत्र के लिए सही किस्म का चयन उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि किसान भाइयों और बहनों, बीज केवल एक कृषि आदान नहीं है, बल्कि यह किसान की आशाओं, मेहनत और भविष्य की समृद्धि का आधार है। एक सही बीज का चयन पूरे कृषि चक्र को सकारात्मक दिशा दे सकता है। इसलिए हमेशा प्रमाणित, गुणवत्ता युक्त और अनुशंसित बीजों का ही उपयोग करें। बीज अच्छा हो तो फसल मुस्कुराती है, मेहनत किसान की रंग लाती है, हर खेत में खुश

0: थाली का संदेश यही, प्रमाणित बीज अपनाइए, समृद्धि घर तक आती है। धन्यवाद।
1: किसान साथी, अभी आपने हमारी वार्ता में आस्था शर्मा से उन्नत बीज समृद्ध किसान पर जानकारी ली, और आइए अब हम आपको बताते हैं आज और कल के मौसम के बारे में। आज का अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाए और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम में वक्त है आपके मनोरंजन का, तो आइए आपका संगीत में मनोरंजन करवाते हैं और आनंद लेते हैं इस मधुर लोकगीत का।

अभी हमारे ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्यालोक। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मजदूर मंडल।

नमस्कार हमारे प्यारे श्रमिक भाई बहनों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल। मैं हूं आपकी रेडियो साथी मनीषा अरोरा और उम्मीद करती हूं आज आपका दिन अच्छा बीता होगा, है ना? बीता है ना? पर काम के बीच बीच में थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए, पानी पीते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। भले ही सुबह से लेकर शाम तक काम की कितनी भाग दौड़ हो जाए, वो तो होती ही है, हमें पता है। पर कभी काम पर जाना, कभी बाजार जाना, कभी बच्चों को स्कूल छोड़ना, तो जीवन की जो ये दौड़ है ना, वो तो चलती रहती है। लेकिन इस भाग दौड़ में एक ऐसी साथी भी है जो सालों से हमारे सफर को आसान बनाती आई है। ना तो पेट्रोल की चिंता, ना ही ज्यादा खर्च, और सेहत का भी ख्याल रखती है। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल सही समझे, बहुत समझदार हो गए हैं आप। हम बात कर रहे हैं साइकिल की, और आज 3 जून को पूरी दुनिया वर्ल्ड बाइसिकल डे यानी विश्व साइकिल दिवस मना रही है। साथियों, ये सिर्फ एक साधन नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य का और हमारे पर्यावरण का मित्र भी है। रोज थोड़ी देर भी अगर हम आप साइकिल चलाएं, तो हमारा शरीर जो है वो एक्टिव मोड में रहता है, यानी कि सक्रिय रहता है। दिल भी मजबूत बनता है और फिट भी रहता है। हाँ, और तो और, साइकिल चलाने से प्रदूषण भी नहीं फैलता। जब हम छोटी छोटी दूरियों के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं ना, तो ईंधन की बचत तो होती ही है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। अरे हम ऐसा अकेले नहीं कह रहे, बल्कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, वो भी यही मानते हैं। तभी तो वो भी साइकिल चलाने का संदेश देते हैं। अब क्योंकि विश्व साइकिल दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है साथियों, जिससे क्या होता है, साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए मनाया जाता है। साथियों, ये दिवस जो है ना, वो लगभग सभी देशों

में मनाया जाता है, जैसे कि भारत, अमेरिका, यूरोप के देश, एशिया और अफ्रीका के भी कई देश। साथियों, साइकिल की बात करते करते मुझे मेरे बचपन की एक घटना याद आ गई। हुआ यूं कि जब मैं साइकिल चलाना अभी नया नया सीखी थी तो मुझे ना बहुत चोटें लगती थी। वो तो सभी के साथ होता है भाई, अगर हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो चोटें तो लगेंगी। तो एक बार गर्मियों का टाइम था, घर में सब लोग सो रहे थे, मैंने सोचा चलो अभी मुझे नींद तो आ नहीं रही, तो मैं धीरे से साइकिल उठाई और मैंने कहा एक पार्क का राउंड लगा लेते हैं। उस वक्त हमारा घर के सामने एक पार्क होती थी, तो पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाने का मैंने सोचा और निकल पड़ी मैं अकेले ही साइकिल लेकर। अब क्या हुआ कि साइकिल की स्पीड तेज रखी थी मैंने, और वहाँ कहीं किसी घर में मकान बन रहा था, तो वहाँ पर मकान के बाहर ढेर सारी रेत रखी हुई थी, और क्योंकि मेरी जो साइकिल थी वो तो स्पीड पर थी, वहाँ धीरे करने की जगह मैंने सोचा थोड़ा और तेज़ स्पीड से वहाँ से निकल जाती हूँ। भाई तेज करने की जगह वहाँ मेरी साइकिल ऐसी स्लिप हुई कि मुझे ऐसी चोटें लगी, और मम्मी से जो डांट पड़ी वो मुझे आज भी याद है। भाई मैंने कानों को हाथ लगाया कि अब मैं रेत के ऊपर से साइकिल नहीं निकालूंगी, पैदल ही चलकर वहाँ से निकाला करूँगी। है ना साथियों, कितना मज़ेदार बात है जो हमें बचपन की बातें याद आती हैं। खैर, हम बात कर रहे थे साइकिल दिवस की, और अब आपको ये बताते हैं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना, हमारे पर्यावरण का संरक्षण करना, यानी उस पर हमें ध्यान देना है, स्वस्थ जीवन शैली को तो अपनाना ही है, साथ ही ट्रैफिक को और प्रदूषण को भी कम करना। तो ये है साइकिल दिवस के उद्देश्य, और अब बताते हैं इसके फायदे। तो भाई शरीर तो फिट रहता ही है, दिल की सेहत भी सुधरती है, खर्च भी कम होता है। किसका? अरे पेट्रोल और डीजल का। साथ ही हमारे मानसिक तनाव को भी कम करता है। लेकिन साथियों, साइकिल चलाते समय आप सुरक्षा का ध्यान रखें, रात में सड़क के नियमों का पालन करें, वैसे तो दिन में भी करना है लेकिन रात में और ज़्यादा करें, क्योंकि रिफ्लेक्टर या लाइट का उपयोग अगर आप करेंगे तो उसे आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। तो साथियों, साइकिल हो या फिर जीवन हो, मंजिल तक तो वही पहुंचता है जो चलते रहने का हौसला रखता है, है ना? तो फिर इसे खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं ये सदाबहार।

साथियों, अभी हमने आपसे विश्व साइकिल दिवस पर ढेर सारी बातें की, आपको इसके बारे में जानकारियां दी, पर हमने आपको सिर्फ एक बात नहीं बताई, क्योंकि उसी का प्रश्न हमने आपसे जो पूछना है भाई साहब। जी हाँ, तो आपको बताना ये है कि विश्व साइकिल दिवस पहली बार कब मनाया गया। है ना आसान सा प्रश्न, और आसान नहीं लगा आपको तो कोई बात नहीं, इसका जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे, तो हमसे जुड़े रहिएगा, कहीं आपका उत्तर मिस ना हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी क्रम में ज्ञान सागर के अंतर्गत आपको ले चलते हैं कच्छ का रण, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, भारत की सबसे अनोखी जगह में से एक। कच्छ के बारे में पता है, एक कहावत है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जानते हैं ऐसा क्यों? कहते हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ का सफेद रेगिस्तान, जी हाँ सफेद रेगिस्तान, वो भी नमक का, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ नमक ही दिखाई देता है, इसीलिए ऐसा लगता है जैसे बर्फ की चादर बिछी हो। इसका क्षेत्रफल भी लगभग 7500 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब आप ये पूछेंगे कि ये सफेद क्यों दिखता है भाई, तो इसका तो सीधा सा जवाब है कि जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ पर जो समुद्री पानी है और जो बारिश का पानी है वो आकर भर जाता है, और बाद में जब वो पानी सूख जाता है तो नमक की जो मोटी परत होती है ना, वो ज़मीन पर रह जाती है, और यही नमक जो है वो पूरे रण को सफ़ेद बना देता है। साथियों, जब पूर्णिमा की रात होती है ना, तो चांद की रोशनी जब सफ़ेद नमक पर पड़ती है तो वाह क्या कहने।

0: भई पूरा रण ही चांदी की तरह चमकने लगता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। साथियों, इसके अलावा यहाँ की जो संस्कृति है, लोक संगीत है और जो हस्तशिल्प है, वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वैसे जब यहाँ पर मौसम साफ होता है ना, तो सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य इतना सुंदर होता है, ऐसा लगता है जैसे कि आसमान और जो धरती है ना, वो एक दूसरे से मिल रहे हो। साथियों, यहाँ पर सफ़ेद नमक की चमक के कारण दूर की चीज़ें कभी कभी पास भी दिखाई देने लगती हैं, और पास की जो चीज़ें होती हैं वो ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर चली गई हैं। अगर आपको गुजरात जाने का मौका मिले तो प्रकृति की अनोखी सुंदरता को ज़रूर देखकर आइएगा, जो सिर्फ एक रेगिस्तान ही नहीं बल्कि प्रकृति, संस्कृति और अद्भुत सुंदरता का संगम है। लेकिन जरा संभल कर साथियों, भाई यहाँ गर्मियों में जो तापमान है वो 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है, वहीं सर्दियों में रातें काफ़ी ठंडी होती हैं। वैसे शुक्र है परमात्मा का कि हम यहाँ लू के थपेड़ों से आजकल बचे हुए हैं, नहीं तो नौ तपा में तो हम सभी तप जाते। सुहाने मौसम ने और कभी कभी जो बारिश हो जाती है ना बीच बीच में, उसने जान बचा रखी है हम सबकी। पर फिर भी आप अपनी सेहत को लेकर लापरवाही मत करिएगा। देखिए, पानी तो पीते ही रहना है, चाहे तो आप सादा पानी बार बार पीने की जगह दिन में आप दो तीन बार नींबू पानी ले लें, उसमें चुटकी भर नमक डाल लें, उसमें चीनी डाल लें, उसे पी लें। इससे क्या होगा, ना तो आपको कमजोरी आएगी और ना ही चक्कर आएंगे। और साथियों, सिर्फ रोटी और प्याज से काम नहीं चलेगा। हर बार आपको अपने खाने में दाल, सब्जी, चावल और चना तो जरूर से खाना है। हफ्ते में दो बार अंडा भी खा सकते हैं अगर आप खाते हैं तो, नहीं खाते तो कोई बात नहीं, सोयाबीन की सब्जी भी तो बहुत स्वाद लगती है, उसे खा सकते हैं। और हाँ, सत्तू का शरबत, उसे कैसे भूल गए भाई। भाई दो चम्मच सत्तू लीजिए, उसमें डालिए नमक, उसमें डालिए पानी और पी जाइए तुरंत गटागट। इससे क्या होगा, ताकत मिलेगी। जी हाँ, और तो और साथियों, थकान मिटाने के लिए ये जो आप गुटखा खा रहे हैं ना, नहीं जी नहीं, उसे आपको धीरे धीरे कम करना है, क्योंकि ये अंदर से आपको खोखला कर देगा। इसकी जगह पर अच्छी चीज़ खाइए। क्या अच्छी चीज़, अरे सौंफ ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए या इलायची मुंह में दबा लीजिए, है ना। और ये जो आप गुटखा खाते हैं उसे जो पैसे बच जाए ना, उसे केला खरीद कर खा लीजिएगा। जी हाँ साथियों, आपकी सेहत ही आपकी पूंजी है, इसे संभाल कर रखिए तो सब कुछ संभल जाएगा। वैसे साथियों, आपको लग रहा होगा मैं कितनी बातें कर रही हूँ, है ना। तो चलिए, वैसे हम किस्से कहानियाँ तो अपने बचपन में अपनी दादी नानी से बहुत सुनते आए हैं। भाई क्या सुनते थे, कि एक हीरो आया, उसकी एंट्री हुई, हाथ में उसके एक बंदूक है और वो सब गुंडों को मार गिराता है और हीरोइन को बचा लेता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है ना। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे हीरो की कहानी सुनवाने जा रहे हैं जो कि गमछे वाला हीरो है। तो चलिए सुनते हैं श्रीमती सपना मांगलिक से ये कहानी।
1: बिहार का सीमांचल जिला किशनगंज, यूं तो तीन तीन पड़ोसी मुल्कों बांग्लादेश, बर्मा और नेपाल की सीमाओं को छूने का साहस रखता है, मगर गरीबी और भुखमरी से लड़ने का साहस कभी नहीं रख पाया। और जब भी ये हिम्मत करने की कोशिश भी की इस जिले ने, भगवान गवाह है कि कोई ना कोई देवीय आपदा, जिसमें बाढ़, अंधड़, सूखा इत्यादि कोड़ में खाज की तरह से फैल गया। इसी गांव में रहता है हमारे मटरू का परिवार। मटरू छोटा सा किसान था जिसका खेत इसी बेमुरब्बत बाढ़ की भेंट में छड़ गया। अब मटरू के सामने कोई विकल्प बचा ही नहीं था सिवाय चने बेचकर गुजारा करने के। अब यूं तो सरकार एक के बाद अभी नहीं और दो के बाद कभी नहीं कि कितने भी नारे लगा ले, वैसे भी

जैसे खेल में हारा हुआ व्यक्ति अपनी हार पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता है, वैसे ही मटरू ने भी ये कहते हुए कंधे उचकाए कि हर बच्चा अपनी किस्मत और रोटी खुद लिख के लाता है। अब मटरू की जोरू को नवा पूरा होने जा रहा था, और जब तक मटरू का कोई इंतजाम करे, उसके तीसरे किस्मत वाले बच्चे ने मूसलाधार बारिश में अपने आने की दस्तक देनी शुरू कर दी। ऊपर बारिश की दस्तक और नीचे प्रसूता की चीख चिल्लाहट, दोनों ने मिलकर मिट्टी की छत का दिल दहला दिया और छत भर भरा कर गिर गई। आनन फानन में पड़ोसी के घर मटरू के इस किस्मत वाले बच्चे ने अपनी आंखें खोली। अनपढ़ मटरू अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बाबू बनाना चाहता था, मगर उसके बड़े लड़के पढ़ाई में कमजोर निकले। अब मटरू की आखिरी उम्मीद यह तीसरा बच्चा था और पढ़ लिख कर उसका नाम रोशन कर दे। सो मटरू ने दिन में चने बेचना और रात को गार्ड की नौकरी शुरू कर दी, जिससे तीसरे की पढ़ाई का खर्चा निकल जाए। मगर नचके का मन नाचने गाने में ही लगता था। नचके ने एक दिन देखा कि बापू ताजी टमाटर प्याज की जगह बासी और फेंकने योग्य प्याज टमाटर बीन बीन कर उन्हें कम दानों पे खरीद रहे हैं, तो बापू से पूछे बिना रह ना सका। उसने पूछा, बापू आप चने में ताजी प्याज क्यों नहीं डालते? मटरू एक बार तो घबरा गया, फिर मासूम बच्चे के सवाल से आंखों में आंसू ले आया और बोला कि जिस दिन मेरा नचका बाबू बन जाएगा, उस दिन मैं चने से ताजी ताजी टमाटर प्याज डालने लगूंगा। मटरू प्यार से नचके के बाल सहलाकर पूछता है, बोल नचके बनेगा ना तू बाबू? और नन्ना नचका नाचते हुए कहता है, हाँ बापू। नचके के गाने और नाच पूरे गांव के लोग पसंद करते थे। सो नचके के मन में अब अपनी एल्बम निकालने का जुनून हो आया। वैसे भी यार दोस्त फुर्रे पे चढ़ाने के लिए काफी होते हैं। उसने इधर उधर से पता किया कि एक एल्बम करीबन 25,000 में निकलती है। अब नचका मायूस हो गया, मगर मटरू ने अपने नचके के लिए हार तोड़ मेहनत करके रुपए इकट्ठे किए और उसे यह कहते हुए दिया कि बचुआ, कहते हैं कि बाड़े पूत पिता के धर में और खेती उपजे अपने धर में। नचका बापू की बात से मना नहीं कर सका और रुपए लेकर सीधे सपनों की नगरी पटना पहुंच गया, जहां एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए और एल्बम बनाकर बोला, अरे बचुआ ये तो फ्लॉप हो गई, एक कैसेट तक नहीं बिकी। नचका अब घर का रहा था न घाट का, सो उसने इसी नगरी में रहकर संघर्ष करने की ठान ली और एक ढकेल किराए पर लेकर उस पर बिहारी पकवान जैसे लिट्टी सतुआ चोखा इत्यादि बेचने लगा। 3 महीने में उसने विभिन्न नौटंकियों से 20,000 रुपये इकट्ठे कर लिए और फिर उसी स्टूडियो मालिक के पास पहुंचा और दूसरी एल्बम निकालने की विनती की, मगर अब इस स्टूडियो के मालिक ने उसे फिर से धोखा दे दिया और एल्बम निकाल के बोला, बचुआ तेरी आवाज़ में जान नहीं है, ये एल्बम फिर से फ्लॉप हो गई। नचके ने उसके पांव पकड़ लिए कि कुछ रुपए तो रॉयल्टी के दे दो, मगर स्टूडियो मालिक ने उसे लताड़ा, ससुरे क्यों बाप के पैसों को आग लगा रहा है, जा कहीं जाकर मेहनत मजदूरी कर, घर में दो रोटियां चले आते हैं जाने कहाँ कहाँ से। नचका का अपमान से तिलमिला गया और उसने कसम खाई कि जिस दिन वह बड़ा आदमी बन गया, उस दिन सबसे पहला काम इस स्टूडियो को खरीदने का करेगा। अपमान वो नदी है जो आदमी को लच्छे की नाव में बिठाकर आत्मसम्मान के किनारे तक पहुंचाती है। नचका अब मेहनत मजदूरी करता रहा, संघर्ष करता रहा, लेकिन अपना सपना उसने कभी नहीं छोड़ा। अब नचके को ख्याल आया कि क्यों ना एक वीडियो एल्बम निकाली जाए, जिसमें उसके गाने के साथ साथ उसका नृत्य भी लोग देख सकें। उधर गांव में पिता ने कुछ और ही सोच रखा था। पिता मटरू ने नचके की शादी की बात चला रखी थी। नचका भी गांव पहुंच गया और ससुर के सामने शर्त रखी कि तिलक में उसे रेमंड का बढ़िया लाल रंग का कोट पैंट चाहिए। ससुराली भी ससुर गरीब, मगर बेटी ब्याहने के लिए कौन बाप कर्जा नहीं लेता है। उसने

0: अर्जा लेके जमाई बाबू को कोट पहना ही दिया। नचका पत्नी को साथ लेकर पटना आ गया और वापस पति पत्नी अपने बिहारी पकवान की टेल चलाने लगे। जब भी नचका पत्नी से कामयाब होने के सपने का जिक्र करता तो पत्नी उसका खूब मजाक उड़ाती और कहती, काहे उड़त हो, काहे उड़त चरई को हल्दी लगा थो बबुआ। और नचका मूछें अमेटते हुए कहता, गोरिया जहां सुई ना समात है वहां नचका फाड़ के घुस जाते हैं। और दोनों फिर वही हंसते खिलखिलाते लिट्टी चोखा बनाने में लग जाते। एक दिन नचके की ठेल पर एक आदमी आया और बातों ही बातों में उसने बताया कि वह एक कास्टिंग डायरेक्टर को जानता है जो भोजपुरी फिल्मों के लिए कास्टिंग करता है। अब तो नचके ने उससे मिलने की ठान ली और बोला, बाबू हमें उस साहब से मिला दो, बस एक बार तुम हमका सपोर्ट कर दो, फिर देखना हम कैसा विस्फोट करते हैं, पूरा छिपरा हिला देंगे कसम से। उसके बार बार कहने पर वह आदमी उसे डायरेक्टर से मिलवाने के लिए ले गया, मगर डायरेक्टर नए लौंडे को काम देकर जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मगर नचके ने जब उसे अपना नृत्य और संवाद सुनाए और कहा कि बाबू इस फिल्म के लिए मैं एक पैसा मेहनताना नहीं लूंगा, तो डायरेक्टर मान गया और इस तरह हमारा नचका बन गया गमछे वाला हीरो लक्ष्मण दास। लक्ष्मण का नृत्य और संवाद अदायगी लोगों के सर चढ़कर बोलने लगे और लक्ष्मण के कमर तोड़ ठुमकों ने तो रात और रात उसे बिहार का सुपरस्टार बना दिया। अब तो उसकी फिल्मों की टिकट खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लोग रात दिन खड़े रहने लगे और जिस रिकॉर्डिंग स्टूडियो से उसे धक्के देकर बाहर निकाला गया उसी का मालिक लक्ष्मण के नाम को भुनाने के लिए 50 लाख रुपए देकर उसे एक एल्बम के लिए साइन करने आ गया। मगर इस गमछे वाले हीरो ने अपनी संवाद अदायगी का परिचय अपने बदले के रूप में कुछ इस तरह दिया, बाबू लक्ष्मी जी की कृपा से इस धनतेरस पर आपका स्टूडियो खरीद कर आपको ही तोहफा भेजेंगे, एल्बम की क्या बात है।
1: साथियों, अभी आपने श्रीमती सपना मांगलिक से जो कहानी सुनी वो थी गमछे वाला हीरो। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो फिर चलिए इसके बाद अब थोड़ा और मनोरंजन हो जाए, वो भी इस गीत से।

0: तो साथियों, अब बारी है आज के प्रश्न का उत्तर देने की। तो हमने आपसे प्रश्न किया था कि विश्व साइकिल दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो इसका जवाब है 3 जून 2018 को। तो साथियों, इस जवाब के साथ ही आज के कार्यक्रम मजदूर मंडल को यहीं पर संपन्न करने की मनीषा अरोरा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
3: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
2: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
4: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
2: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपये से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: the United States of America in annual solar capacity additions in 2025. Mr. Yadav emphasized that the achievement reflects the nation's rapid clean energy growth, helping ensure efficient, reliable and sustainable solar infrastructure. West Bengal Social Security Scheme Annapurna Yojana was formally launched today at Nabana by the Chief Minister Suvendu Adhikari, transferring 3,000 rupees directly into the bank accounts of over 28 lakh women. Benchmark domestic equity indices ended with moderate losses today. The BSE Sensex dropped 304 points to close at 74,346. The NSE Nifty slipped 78 points to settle at 23,406. And in badminton, India's Ayush Shetty entered the second round of the Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang in a comeback victory. India also registered a notable win in mixed doubles, with Rohan Kapoor and Ritvika Gade defeating Chinese Taipei's Yang Bo Shin and Hu Ling Fang in straight games 21-14, 21-14. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:10 हुए हैं। विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विश्व साइकिल दिवस पर केंद्रित वार्ता। जीवन संतुलन की पाठशाला है साइकिल। वार्ताकार हैं दाऊजी अग्रवाल।
2: हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। साइकिल की सवारी न केवल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सक्षम है, बल्कि सामाजिक समानता और सतत विकास की दिशा में भी योगदान देती है। साइकिल प्राचीन समय से ही विश्वसनीय है और परिवहन का एक सस्ता, सरल, भरोसेमंद साधन है, जो पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। दो पहियों पर चलने वाली यह सवारी एक बेहतर भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। भीड़भाड़ वाले महानगर हों या फिर छोटे कस्बे, साइकिल हर जगह असरदार ढंग से दैनिक जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। विश्व साइकिल दिवस पर उसके इसी योगदान को पहचानने का एक अवसर आता है। साइकिल चलाने के अनेकों लाभ हैं। साइकिल चलाना केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यह शानदार व्यायाम है। यह हृदय, रक्त वाहिकाओं और फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। रोजाना आधा घंटा साइकिल चलाने से चर्बी कम होती है और शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है। शरीर की मांसपेशियों को स्वस्थ और मजबूत बनाती है। साइकिल चलाने से इम्यून सिस्टम ठीक तरीके से काम करता है। थकान की वजह से अच्छी नींद लाने में साइकिल सहायता करती है। तनाव के स्तर और निराशा को भी कम करती है। साइकिलिंग करके अतिरिक्त कैलोरी को बहुत ही आसानी से संतुलित किया जा सकता है। स्वास्थ्य के साथ साथ साइकिल आपके पैसे बचाने का काम भी करती है। शहरों में बढ़ती जनसंख्या के साथ प्रदूषण और यातायात भी बढ़ता जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए साइकिल को बढ़ावा देना जरूरी हो गया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि बड़े शहरों में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सड़कों पर सुविधा मार्ग उपलब्ध कराए जाएं और विशेष व्यवस्था की जाए। साइकिल सतत विकासशील माध्यम है। साइकिल एक सस्ता, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल माध्यम है, जो न केवल शहरों की भीड़ और प्रदूषण को कम करता है बल्कि सबसे वंचित वर्गों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुविधाओं तक पहुंच को भी आसान बनाता है। 15 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें साइकिल को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की मुख्य धारा में लाने की बात कही गई। साथ ही इसे सतत उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देने वाला, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में सकारात्मक भूमिका निभाने वाला एक साधन बताया गया। संयुक्त राष्ट्र ने साइकिल की विशिष्टता, लंबे समय से इसके इस्तेमाल और बहुउपयोगिता को मान्यता दी है। महासभा ने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर साइकिल सवारी आयोजित करने की पहल का भी स्वागत किया है। इन आयोजनों के जरिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने, जागरूकता फैलाने और समाज में साइकिलिंग की संस्कृति विकसित करने का रास्ता तैयार होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साइकिल चलाना, पैदल चलना या खेलकूद जैसी नियमित शारीरिक गतिविधियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हैं। हर कदम और साइकिल

0: की हर सवारी यातायात भीड़, वायु प्रदूषण और बीमारियों को कम करने में मदद करती है। शहरों के निर्धन वर्ग के लिए जो अपना निजी वाहन नहीं खरीद सकते, साइकिल आवागमन का एक मुख्य साधन है। यह उन्हें काम, स्कूल, अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस तरह साइकिल न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि सामाजिक समानता और आर्थिक रूप से भी एक प्रभावी विकल्प है। इसके कुछ सफल उदाहरण हैं, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान कई शहरों ने अपने परिवहन ढांचे पर दोबारा विचार किया और साइकिल को एक सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प के रूप में अपनाया। इसी दिशा में दुनिया के कई शहरों ने ठोस कदम उठाए हैं। ब्राजील के फोर्टालेजा शहर में साइकिल मार्गों के नेटवर्क को 70 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर से अधिक कर दिया गया है, जिससे पैदल चलने की गतिविधियों में 109% की बढ़त हुई है। पेरिस में हर सड़क पर साइकिल मार्ग बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है और नॉर्वे के बर्गन शहर में दुनिया की सबसे लंबी पैदल और साइकिल सुरंग बनाई गई है। साइकिल एक ऐसा साधन है जो हमें स्वस्थ रखता है, पर्यावरण को बचाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विश्वसनीय भविष्य बनाता है। इस संबंध में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपना मत व्यक्त किया है कि जीवन साइकिल चलाने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना चाहिए। साइकिल सकारात्मक मानसिकता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। साइकिल पर संतुलन बनाए रखना भी आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। यदि आप गिरने के डर पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपना संतुलन खो देंगे। इसी तरह जीवन में विफलताओं की संभावना या अज्ञात के डर पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से हम रुक सकते हैं और पूरी तरह से आगे बढ़ना बंद कर सकते हैं। एक सकारात्मक आशावादी मानसिकता हमें बाधाओं के बजाय आगे की यात्रा पर ध्यान केंद्रित रखती है। जैसे जब किसी कठिन निर्णय या चुनौती का सामना करना पड़ता है तो समाधान पर ध्यान केंद्रित करना और आशावाद बनाए रखना हमें आगे बढ़ते रहने में सहायता प्रदान करता है। एक सकारात्मक मानसिकता हमें संदेह को दूर करने और आगे की गति बनाए रखने की अनुमति देती है, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाने में होता है। संतुलन, गति और गति के रूपक को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए कुछ प्रतीकों और छवियों के बारे में बात करें। साइकिल चालक जीवन की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। चुनौतियों के माध्यम से पैडल मारना और संतुलित रहना सीखता है। घंटा समय का प्रतीक है जो जीवन की तरह आगे ही बढ़ता रहता है। अंकुर अथवा पौधा विकास का प्रतिनिधित्व करता है जो निरंतर प्रगति और विकास की ओर जाता है। स्टॉप साइन ठहराव या गति की कमी का प्रतिनिधित्व करता है। मांसपेशी ताकत का प्रतिनिधित्व करती है। चुनौतियों के माध्यम से आगे बढ़ते रहने के लिए आंतरिक लचीलापन और शक्ति प्रदान करती है। ध्यान में व्यक्ति भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है। आगे बढ़ते समय शांत और केंद्रित रहने की क्षमता विकसित होती है। निश्चित रूप से आइंस्टीन का उद्धरण एक शानदार अनुस्मारक है कि जीवन गतिशील है और साइकिल चलाने की तरह ही संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर गति की आवश्यकता होती है। चुनौतियाँ, असफलताएं और बाधाएं यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम चलते रहें, अगर हम पैडल मारते रहें, तो हम संतुलन बनाए रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रह सकते हैं। मुख्य बात यह है कि जीवन में लचीलापन, दृढ़ता, सकारात्मक गति की आवश्यकता होती है। चाहे आप किसी व्यक्तिगत संघर्ष, पेशेवर चुनौती या रोजमर्रा की परेशानियों का सामना कर रहे हों, गति बनाए रखना और आगे बढ़ना सुनिश्चित करता है कि आप संतुलित रहेंगे और प्रगति करना जारी रखेंगे। इसलिए चाहे साइकिल चलाने की तरह ही पैडल मारना कभी बंद न करें, चलते रहें और इस तरह आप अपना संतुलन प्राप्त कर लेंगे।
1: विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जीवन संतुलन की पाठशाला है साइकिल विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे दाऊजी अग्रवाल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली है गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दी है।
3: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम हैं और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
2: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
4: कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली एनसीआर टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेज हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है।

0: का परिणाम है सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
1: सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है। और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है। और आज इसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्यात के मानकों पर खरा उतरने पर जोर देते हुए प्राकृतिक खेती पर बल दिया।
1: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सकें जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने। गौ आधारित खेती है ये, गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य करना होगा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने का अवसर भी मिलेगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1.25 करोड़ घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। गाजियाबाद के अभिषेक कुमार ने बताया कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिली है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43.52 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: प्रदेश के

0: 31 जिलों में आज और कल टीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। 3,539 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
2: मीडियम वेव 4.1 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर इस समय 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी सुधी श्रोताओं को सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश भारत पर शासन करने आए थे। इतना ही नहीं, 16वीं शताब्दी में व्यापारी बनकर वे भारत आए। उन्होंने ये गौर किया कि भारतीय सत्ता के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। उस समय भारत पर कई राजवंशों के अनेक शासकों का शासन था। अंग्रेजों के शस्त्र भारतीयों के शस्त्रों से कहीं अधिक उन्नत थे। अंग्रेजों ने भारतीयों को स्वतंत्रता का महत्व समझाया और उन्होंने इसके लिए बहादुरी से संघर्ष किया। अंततः 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी प्राप्त हुई। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक बन गया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमने लंबा सफर तय किया है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए भीतर से ही बुराई की शक्तियों को पराजित किया है। ये हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सबसे प्रसिद्ध केंद्रों में से एक बन गया। इसके अलावा भारत की विदेश नीति बेजोड़ है। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था विभाजन। श्रोताओं, हमारे देश को आजादी मिलते ही भारतीय नागरिकों को सत्ता में आने वाली सरकार चुनने का अधिकार मिल गया। भारत को अंग्रेजों के हाथों से आजादी दिलाने वाले अग्रदूतों में से एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1914 में अहिंसा सत्याग्रह की अनूठी पद्धति का उपयोग करते हुए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया।

भारतीय इतिहास के अनुसार हमारे देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ने 1857 में अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के लिए वास्तविक संघर्ष शुरू किया। धीरे धीरे इस आंदोलन को गति मिली और 1947 में हमारा देश स्वतंत्र देश बन गया। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस वर्ष 1947 में मनाया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश का तिरंगा ध्वज फहराया था। ये स्वतंत्रता दिवस समारोह लाल किले में आयोजित किया गया। तब से हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को अंग्रेजों के बंधन से मुक्त तो कराया, साथ ही एक नया भारत हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को दिया गया। इस प्रक्रिया में कई पुरुषों और महिलाओं की जान गई, वृद्धों की जान गई, उन्हें अंग्रेजों ने यातनाएं दी, कई बच्चे अनाथ हो गए और अंग्रेजों के शासन में बहुत सारे कष्ट झेले, लेकिन हमारे देश ने निडर होकर उनका सामना किया।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के नागरिकों ने अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभी भारतीयों ने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और किसी भी बाधा का सामना करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के नागरिकों ने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, चाहे वो विज्ञान हो, सूचना प्रौद्योगिकी हो, खेल हो या सेना। हमारे देश के पुरुषों और महिलाओं ने अपनी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन किया है, जो हकीकत में सराहनीय है।

हमारे देश ने एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर विकसित करके दुनिया को ये दिखाया कि हमारा देश एक महाशक्ति बन सकता है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर का विकास 1956 में हुआ। विश्व के सामने सबसे शक्तिशाली प्रदर्शनों में से एक था चंद्रयान एक, जिसको 2008 में चंद्रमा के लिए प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक सर एम विश्वेश्वरैया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने सबसे मजबूत स्वरूप में स्थापित करने में मदद की। मंगल ग्रह के लिए ऑर्बिटर मिशन 2013 में हुआ। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा 5 नवंबर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मार्च 2014 में हमारे देश को एशिया का पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया। उसी वर्ष भारत को अपना GPS भी मिल गया था। स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने वायु में भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया।

आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत से क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की, उनमें से एक है भारतीय रेलवे। इसका गठन 1951 में हुआ। हमारे देश के पास दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त रेल नेटवर्क में से एक है।

इसके साथ ही कार्यक्रम को समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। श्रोताओं नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक और अनेक। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं रंग फिल्म का गीत, कुमार सानू, अलका याग्निक और पी सुनंदा की आवाज में। समीर के गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का अगला गीत लिया है सुहाग फिल्म से। इसे गाया है कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

अब आइए सुनते हैं कुमार सानू, देवाशीष दास गुप्ता, जुनैद अख्तर की आवाज में सड़क फिल्म का गीत। इसे लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अभी आपने सुना उदित नारायण कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में इश्क फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था राहत इंदौरी ने, धुन बनाई थी अनु मलिक ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं संग्राम फिल्म का गीत, कुमार सानू, पी सुनंदा और अलका याग्निक की आवाज में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक और अनेक। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। पेश है चित्रपट संगीत।

अभी आप सुन रहे थे नायक फिल्म का युगल गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया था A.R. रहमान ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में समीर का लिखा गीत दीवाना फिल्म से। संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधु ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदम।

0: मुखी।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुँचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाई बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रूपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों

और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: MLA Ritobrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Sivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as cabinet ministers. Massive fire in Malviyanagar in Delhi claims 21 lives. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए ATF की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली NCR इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खिता मनसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर D.K. शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। डॉक्टर जी परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से भी हलफ लिया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। मौसमियात के महकमे ने कल केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वैंग होंग यांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मर्तबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अलाकवामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को ATF की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलातो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये अपने आप में काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए की माली अखराजात के साथ दिल्ली NCR इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने की खातिर कौमी राजधानी खित्ते से मुतालिक मनसूबा बंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने उड़ीसा के रामेश्वर से पारादीप तक एक नई साहिली शाहरा की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिसकी कुल लंबाई 163 किलोमीटर से ज्यादा है। मगरबी बंगाल में अहम सियासी वाक़े के तहत रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का लीडर मुकर्रर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के लेजिस्लेचर के एक बागी ग्रुप को एक अलहदा कानून साज पार्टी के तौर पर असेंबली के स्पीकर की जानिब से तस्लीम किए जाने के बाद ये तकरीरी सामने आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: रीता ब्रता, जो CPIM के राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं, वो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें तकरीबन 60 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल

0: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि इस स्कीम से किराए पर रहने वाले अफराद को नुमाया राहत मिली है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 हेल्थ कार्ड जारी किए गए जिससे आम लोगों को हिफ्जाने सेहत के शोबे में तहफ्फुज फराहम किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के तहत जन औषधि केंद्रों पर मयारी जेनेरिक दवाएं 50 से 80% कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर आम दुकानों के मुकाबले दवाएं निहायत ही किफायती कीमतों पर दस्तयाब हैं।
2: लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदें।
0: 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आम आदमी को बाख्तियार बनाने के अमल में एक मजबूत अवामिल साबित हुई है। इस स्कीम के तहत अहल मुस्तफिदीन को अब तक 40,00,000 करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है और मौके वसी हो रहे हैं, भारतीय मुतवस्सित तबका मुल्क की तरक्की, उमंग और खुशहाल मुस्तकबिल में फाल रोल अदा कर रहा है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के वजीर आजम के तौर पर लगातार तीसरी बार ओहदा संभालने पर मेटे फ्रेडरिक्सन को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और पायदार मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म पर मबनी शराकत दारी है। वजीर आजम ने कहा कि वो भारत डेनमार्क ग्रीन कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जनाब फ्रेडरिक्सन के साथ करीबी तौर पर मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। लाओस के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावन फोम विहानी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दहरीना सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे और रामायण से जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के क्याम के 70वें सालगिरह का जश्न भारत लाओस दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी एलियोना रॉड्रिग्स गोम्स भारत के 5 रोजा दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उमूर खारजा, इक्तिसादियात और खजाना के वजरा और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ्द भी उनके हमरा भारत तशरीफ लाया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रॉड्रिग्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा तबादले ख्याल करेंगी। इस तबादले ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा और तवानाई के तहफ्फुज, तजारत व सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकल व हमल और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में मजीद तआवुन के लिए राह हमवार करना शामिल है। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं जिससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी तालमेल की अक्कासी होती है। लंका आईओसी पीएलसी ने सापू गासकांडा पावर स्टेशन के प्लांट ए फॉर 2026-27 के लिए 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392.47 मिलियन श्रीलंकाई रूपए की मालियत का ठेका हासिल किया है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने केरलम और माहे में बहुत तेज बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन के दौरान बहुत तेज बारिश की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वैंग होंग यांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल्स मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका गाडे की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खित्ता मनसूबा बंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
2: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए।
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी है कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और ISR इंस्टीट्यूट हैं जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर

0: जाए और उसका सदुपयोग कर पाए। और पानी की जब फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे बहुत फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कम्पोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं। और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम उपयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलके क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के 2 दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि
1: जी
0: नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की वो ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो
1: जी बिल्कुल
0: मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हराश नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
2: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, इसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण वैली भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का, उससे कम वर्षा रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से 4 महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, कई बार फ्लड की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है या वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है, इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है, इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है
1: जी
2: यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है

0: ठंडा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो इसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए, यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जा सके।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहाँ पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहाँ किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती है जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृत्रिम क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी, हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही,
1: जी
2: अगर धान की सब क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग उसकी ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ पे, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकाली है जिसमें 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30 से 35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए, और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी की पूंछ खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है, जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात की, मध्य भारत की बात की, जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है, तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग 1 हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड है और किसान को सही समय पे सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है और कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें, मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: करती
2: है।
1: जी बिल्कुल दबाज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
2: उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं
1: जी।
2: और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के

0: और में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं। दो छोटे छोटे सवाल, पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मॉनसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
1: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, या इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहें या अगर सौ बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं, उन प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है, उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का, जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मॉनसून को खींच के लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है। इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मॉनसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, एक तरह जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि जो समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है। इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो, सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मॉनसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एलिनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मॉनसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मॉनसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एलिनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशन से एलिनो की वीक कंडीशन की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए ये भी कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
0: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यावहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
2: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक्के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं।

0: हम अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार पाएंगे, और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमार भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते भी लाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है, और साथ साथ में हमारी मिट्टी का वो अच्छा रहता है, और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है, और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जो जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है, और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है, और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब फसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है, और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वार्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है, तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के लगातार संपर्क में बने रहें, और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे
1: जी
0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराए नहीं, और हमें अपने किसानों पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: डिपा
0: साथ
1: जी,
0: में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है, और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है, वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो लेते ह्यूमिडिटी है उसको तो रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है, यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म इन्वायरमेंट की कंडीशन होती है, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है, और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम में बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका, ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रहते हैं।
1: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है, और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है?
0: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है, क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपने वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए, और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सारी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन भोजन मिलता है, और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है, क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है, और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी

0: नीतियां बनाई हैं जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके, जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले वो सक्षम कर सकते हैं। तो उस सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है, और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है। जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करें। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है। जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले एक दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
2: जी है, देखिए पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमोस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के, कि वातावरण में एटमोस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है। इसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रेजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है।
1: जी
2: इसके साथ साथ में एआई का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और एआई एमएल को यूज करके यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल। मानसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मानसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन

0: IR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: चर्चा का विषय है। श्रोताओं, अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद।
2: हेलो मेरी पसंद, एक ऐसा सुरीला सफर जहां हर गीत

0: एक ऐसा सुरीला सफर जहां हर गीत अपने साथ कोई याद, कोई एहसास और दिल की कोई अनकही बात लेकर आता है। कभी कोई धुन पुराने दिनों की खुशबू बनकर मन में उतर जाती है, तो कभी कोई बोल आज के पल को और भी खूबसूरत बना देते हैं। संगीत की इसी नर्म रोशनी में आज हम सजाने जा रहे हैं गीतों की एक प्यारी सी महफिल। तो आइए, दिल के दरवाजे खोलिए, यादों को मुस्कुराने दीजिए और मेरे साथ चलिए सुरों के इस खास सफर पर, कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। और अब बात करते हैं अपने पहले कॉलर से।
1: हेलो
0: हेलो,
1: जी, नमस्कार
0: हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी। मैं बात कर रहा हूँ आदित्य कुमार
0: आदित्य, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी। मैं बिजलीघर से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: अच्छा, और आप क्या करते हैं?
1: जी मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो आप कहाँ पे पढ़ाते हैं? किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं या कोचिंग सेंटर है?
1: इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ मैडम।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या क्या शौक रखते हैं?
1: मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है,
0: अच्छा।
1: इसके अलावा गाने सुनना बहुत पसंद है, और आपका जो आकाशवाणी आगरा है वो मैं रोज सुनता हूँ, इससे ही मेरी आंखें खुलती हैं
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात
1: जी।
0: बताई आपने। तो आप कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ के सुनते हैं और कौन सा पसंद है आपको सबसे ज्यादा?
1: सबसे ज्यादा तो मुझे न्यूज सुनना पसंद है,
0: अच्छा,
1: इसके अलावा मैं फिल्मी गीत बहुत सुनता हूँ।
0: ओके।
1: फिल्मी गीत के जितने कार्यक्रम हैं और संगीत के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो मैं सब सुनता हूँ
0: तो गीत संगीत से आपका काफी लगाव है,
1: जी।
0: तो आपने आज किस गीत को सुनने के लिए कॉल किया है हमें?
1: आज मैं सुनना चाहता हूँ, इतना ना तू मुझसे प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा।
0: ये बहुत ही
1: एक
0: प्यारा
1: मिनट,
0: गीत
1: दोबारा
0: है।
1: दोबारा बोल रहा हूँ,
0: हाँ जी
1: इतना ना तू मुझसे प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। फिल्म का नाम छाया।
0: जी ठीक है, तो आपको हम आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं और आप आगे भी कॉल करते रहिएगा, बने रहिएगा आकाशवाणी आगरा के साथ।
1: जी मैडम, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: कौन बात कर रही हैं?
0: मैं सुनीता मिलन,
2: सुनीता जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
0: खंदारी से, आगरा
2: अच्छा
0: खंदारी।
2: जी, और आप क्या करती हैं?
0: मैं सतमा
2: किस चीज़ का बिजनेस है आपका?
0: बुटीक।
2: अच्छा, तो आप अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनवाते होंगे, है ना?
0: यस।
2: ठीक है ठीक है, ये तो हमारे इंटरेस्ट की चीज है। तो सुनीता जी, आपके घर परिवार में कौन कौन है?
0: जॉइंट फैमिली सभी हैं।
2: अच्छा, तो पूरा दिन आपका घर में बिजी रहता होगा,
0: हाँ
2: अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं?
0: हाँ निकल आता है।
2: अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या शौक रखते हैं आप?
0: सॉन्ग, फ्री टाइम में सॉन्ग सुनना।
2: अच्छा, गीत संगीत का शौक है आपको, तो अभी आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: तुम बिन मूवी का
2: जी, तुम बिन मूवी का कौन सा गीत?
0: कोई सा भी।
2: ठीक है, हम आपको तुम बिन मूवी का एक गीत सुनवाते हैं, और आप आगे भी हमें कॉल करते रहिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: दोस्तों आपको बता दें कि हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आप हमारी फ़ोन लाइंस पर कॉल करके अपनी फरमाइश बता सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0562-3501-852 और 0562-2970-337। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से।
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: कौन बात कर रहे हैं?
2: विजय बात।
1: विजय, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं आगरा से बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, और आप क्या करते हैं?
2: मैं जॉब करता हूँ।
1: जॉब किस सेक्टर में, किस फील्ड में?
2: फिनटेक।
1: अच्छा, और आप क्या क्या शौक रखते हैं?
2: शौक मुझे गाने सुनने का तो ज्यादा नहीं है।
1: तो कोई शौक, कोई हॉबी होगी आपकी?
2: हॉबी कुछ इसके साथ मेरी खास नहीं है।
1: अच्छा, तो आप पूरा दिन अपना जॉब में ही बिजी रहते हैं?
2: जी।
1: अच्छा, ठीक है। आपके घर परिवार में जो लोग हैं वो भी गीत संगीत में रुचि रखते हैं या मतलब जैसे आपने बताया वैसा ही है?
2: नहीं, ऐसा ही है।
1: तो अभी आपने कौन सा गीत सुनने के लिए कॉल किया है हमें?
2: ये अगर तुम साथ हो,
1: तमाशा मूवी।
2: तमाशा मूवी
1: जी, ठीक है, हम आपको आपकी पसंद का सॉन्ग सुनवाते हैं।
2: ठीक है, तो ये सुनने को कैसे मिलेगा हमें?
1: आप रेडियो पे सुन सकते हैं आकाशवाणी आगरा पर। मोबाइल ऐप भी है, न्यूज ऑन एयर ऐप, उस पर आप आगरा का चैनल चला के आप सुन सकते हैं ये प्रोग्राम।
2: ठीक है।

0: विकास बात कर रहा हूँ।
1: जी विकास, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मथुरा से।
1: अच्छा, और आप क्या करते हैं?
0: मैं PCS की तैयारी करता हूँ।
1: अच्छा, तो इसके अलावा जैसे आपने पढ़ाई करी पूरा दिन, और उसके अलावा आप क्या करते हैं रिलैक्स करने के लिए?
0: वॉक करना और जो थोड़ा बहुत समय बचता है उसमें सॉन्ग।
1: जी, तो किस तरह के गीत सुनना पसंद है आपको?
0: हिंदी माध्यम के।
1: बॉलीवुड सॉन्ग्स?
0: हाँ बॉलीवुड।
1: जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: कुछ कयामत फिल्म का एक सॉन्ग है जिसकी लाइन पर वो लड़की बहुत याद आती
1: हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा गीत है वो। तो ठीक है, आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं, और आप आगे भी कॉल करते रहिएगा और बने रहिएगा आकाशवाणी आगरा के साथ।
0: है। जी जी
1: कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: इसी के साथ आज का ये सुरीला सफर यहीं ठहरता है, लेकिन गीतों की गूंज और यादों की महक यूं ही आपके साथ बनी रहेगी। आज हमने कुछ धुनों को सुना, कुछ लम्हों को जिया और कुछ एहसासों को शब्दों के सहारे आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश की। गीत सचमुच अजीब होते हैं, कभी वक्त को रोक लेते हैं, कभी बीते हुए कल को आज में ला खड़ा करते हैं और कभी बिना कुछ कहे मन की पूरी बात कह जाते हैं। दोस्तों, आपकी पसंद हमारे लिए फरमाइश नहीं बल्कि आपके दिल का एक संदेश है। इसी प्यार, इसी अपनेपन और इसी संगीत के रिश्ते के साथ हम फिर मिलेंगे कुछ नए गीतों, नई यादों और नए एहसासों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जिंदगी की हर छोटी खुशी को दिल से अपनाते रहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद, संवादक गरिमा शाक्य और प्रस्तुतकर्ता थे अनेंद्र सिंह। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वसीम अहमद खां का राग बिहाग में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वसीम अहमद खां का राग बिहाग में ख्याल गायन। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में

0: ने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैश्रम ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे

0: इसमें एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।